0: हैं जहां पर बोथ ड्राइविंग या फिर पैसेंजर सर्विसेज दोनों के लिए ही ऑटोमेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. ओपनिंग क्लोजिंग डोर्स, डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द व्हीकल डेस्टिनेशन, मतलब बहुत कुछ इंक्लूड करते हुए ड्राइवर लेस बसेस की बात हो रही है आज की जिंदगी में. आप सोचिए हाउ इट विल रियली हेल्प, जहां पर कुछ देश हैं जहां पर ड्राइवर्स मिलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, राइट. लेकिन ऑन द अदर साइड ड्राइवर लेस बसेस, मतलब कि हम टोटली मशीन्स पर रिलाय कर रहे हैं. एंड आई वंडर हाउ गुड दैट इज. डेफिनेटली बहुत सही टेस्टिंग की जरूरत है एंड 100% प्रिसिशन की. सुनते हैं हमारा धुरंधर द रिवेंज के साउंडट्रैक से वाला अगला गाना कमिंग अप आफ्टर दैट अ ब्यूटीफुल जुबिन नौटियाल ऑन द वोकल. स्टे ट्यून्ड, इट इज द मॉर्निंग शो विद रेणुका.
1: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: गाना चाहिए, आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन,
4: ऑल इज वेल।
3: आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: And on Radio Masti 24/7, time for me to say wow. Welcome to the new Singapore Cruise Center, जो खुल रहा है कल के दिन से. Monday Coffee का best partner, the morning show on Radio Masti 24/7. News, views and a pinch. बात होती है सिंगापुर की तो बात होती है efficiency की, and definitely this is the latest in that area. The new Singapore Cruise Center खुलने वाला है कल के दिन से, with ferry and cruise operations relocating from the existing terminal in two phases इसी महीने में. Batam Fast Ferry will be the first to move, starting operations from the new terminal. कल के दिन में, the remaining ferry operators, that is Horizon Fast Ferry, Majestic Fast Ferry, Sindo Ferry and Indo Falcon Shipping and Travel, ये सारे के सारे follow करेंगे July 15th को, along with cruise operations. Ferry routes, destination schedules बिल्कुल unchanged हैं, so ferry and cruise berth locations भी बिल्कुल unchanged हैं. The new terminal located at 5 Harbourfront Avenue, about 70 meters from the existing terminal. ये सब मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था. Harbourfront Center के बीच में ही है. It is housed in a red building. It sits across from the entrance of the reef at King's Dock Condominium and behind Harbourfront Tower 2 facing the sea. Passengers access कर सकते हैं terminal को via Harbourfront MRT Station Exit B with sheltered walkways connecting it to the station and to Vivo City. Singapore Cruise Center ने कहा कि passengers encouraged हैं to use public transport as parking is limited and stepping onto the first floor, travellers will find a check-in process similar to an airport's. Travellers अपने boarding passes print कर सकते हैं, baggage tags print कर सकते हैं at one of the 25 self-service check-in kiosks before dropping off luggage at one of the 6 self-service baggage drop counters. तो अब आपका जो फेरी पे जाने का एक्सपीरियंस है वो पहले जैसा नहीं रहा, अब बिल्कुल एयरपोर्ट जैसी फील होगी इवन एट द न्यू फेरी सेंटर्स, इवन फॉर द क्रूजर्स. अमेजिंग. चलिए जी, करंट प्रोसेस से चेंज है, जहां पर पैसेंजर्स जो फेरी टिकट्स ऑनलाइन लेते हैं उनको बोर्डिंग पासेस काउंटर पे लेने पड़ते हैं, अब कोई जरूरत नहीं है. इंसान जाएगा कहां, जाएगा कहाँ, ये मशीनें हर जगह आ रही हैं धीरे धीरे, नोट किया आपने. गुड मॉर्निंग.

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space. Dear मस्ती, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy at मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: All right, on the Bollywood news section. Well, मुबारक हो आमिर खान की तीसरी शादी कल धूमधाम से हो गई और अब वो तीसरी बार वेरी मच हैप्पीली मैरिड हैं.
1: Serious headlines with a not so serious vibe only on the morning show on Radio Masti 24/7.
0: भाई हम कहते हैं कि हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो शादियां कर ली हैं ऐसी भी क्या बात है. Take a look at how many people have had multiple marriages in Bollywood. जी हाँ, so हमेशा से audiences को तो fascinate की है, लेकिन personal lives जो है ना, हम somehow इनकी देखकर भी थोड़े से fascinate हो जाते हैं. वरकुश और कुमार, कबीर बेदी, इन सब की बात, इन दोनों की बात करी जाए तो दोनों ने चार चार शादियां करी थी. तो आमिर खान तो अभी पीछे हैं. किशोर कुमार की पर्सनल लाइफ वॉज सो इवेंटफुल जस्ट एज हिज म्यूजिकल करियर, राइट. रूमा गुहा ठाकुरता, फॉलोड बाय मधुबाला, देन योगिता बाली, एंड देन फाइनली लीना चंद्रवार. चारों शादियां करी है ना किशोरदा ने. साथ ही में कबीर बेदी की जर्नी अगर देखी जाए तो देयर वाज अ मैरिज विद प्रतिमा बेदी एट वन पॉइंट, फॉलोड बाय सुजन हम्फ्रीज, देन निकी बेदी, एंड देन परवीन दुसांज, राइट. सो भाई होता है. संजय दत्त को देखिए, ऋचा शर्मा है, देन रिया पिल्लई है, नाउ ही इज मैरिड टू मान्यता दत्त. सो ऐसी कौन सी बात है. विनोद मेहरा, मीना ब्रोका, बिंदिया गोस्वामी, किरण मेहरा, एंड देन बीच में तो हमने रेखा जी के साथ में भी सुना था, देन आमिर खान ऑफकोर्स जो कि मैरिड है टू रीना दत्ता, देन लेटर टू किरण राव, एंड कल के दिन में टू गौरी स्प्राट. सो ऐसी कोई बात नहीं है. मेरे बाप देखिए, हो जाता है ऐसी, मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में या इनके ज़माने में ये सब चीज़ें नॉर्मल है. उनकी इंटरमेट सेरेमनी की पहली फ़ोटो बिल्कुल बाहर आ चुकी और कल ही के दिन में हमने भी शेयर करी अपने सोशल मीडिया पर. तो बहुत बहुत मुबारक हो. प्रीवियसली ही वॉज मैरिड टू रीना दत्ता एंड देन टू किरण राव, एज वी नो. बड़ा ही पर्सनल सा मोमेंट, रजिस्टर्ड मैरिज सराउंडेड बाई क्लोज फैमिली एंड लव्ड वंस, एंड ऑफकोर्स द मैरिज डॉक्यूमेंट, सिंपल ट्रेडिशनल आउटफिट, गौरी जो है एलिगेंटली ड्रेस्ड एंड स्माइलिंग, एक छोटा सा बच्चा उन दोनों के बीच में खड़ा हुआ है. एल्डरली रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वेल विशर्स हैं. तो बहुत ही प्यारी सी ये शादी जो कल के दिन में बहुत ही ब्यूटिफुली इसको कंप्लीट करा गया, क्या बात है. ऑन रेडियो मस्ती 24/7 बढ़ते हम आगे पापा कहते हैं वाले गाने के साथ, नो पन इंटेंडेड, बड़ा नाम करेगा. तो आप मुझे अलग से लिख सकते हैं अपने कमेंट्स. आई बी हैप्पी टू ऑल्सो हैव अ डिस्कशन विद यू ऑन व्हाट्सएप 9151896. गुड मॉर्निंग, मुबारक हो आमिर खान और आप लोगों को भी.
2: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
3: दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है. No, really, I mean it. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
2: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार बॉटल में खरीद रहे हैं।
3: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
4: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट

0: They were created.
1: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
2: Alpha.
0: The newest chapter in the YRF spy universe.
3: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई.
0: Alia Bhatt and Sharvari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
4: Alpha program उसका जुनून है, और जो भी उसके रास्ते में आता है, वो उसे मार देता है.
0: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.
5: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ.
6: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
5: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ.
6: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर.
7: जीजी
6: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com. प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस. बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com.
7: GG Mart, your personal grocer.

0: your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice.
1: The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
3: Check it out. Josh Mehra.
1: 9 बजने के उस पार रेणुका विद यू, रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है आपका और हमारा मंडे सुबह का, जी हाँ वही वाला शो, इट्स कॉल्ड द मॉर्निंग शो, जहां पर आप और मैं कॉफी के प्याले साथ साथ पीते हैं और बातें करते हैं, हाँ भाई, जैसे कि साथ साथ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. इज़न्ट दैट फन गाइस? सुबह का असली वेक अप कॉल, द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती 24/7. जी बिल्कुल, असली वेक अप कॉल. अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, उठने का मन कहाँ करता होगा. बात करें 4th of July की. जी हाँ, तो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही के दिन में अमेरिका के 250th बर्थडे पर, जी हाँ, क्या स्पीच दी. वेल, द स्पीच वाज डिलेड बाय सेवरल आवर्स क्योंकि जो स्टॉर्म्स हैं दे फोर्स द टेम्पररी इवैक्यूएशन ऑफ क्राउड्स इन वॉशिंगटन, एंड ही क्लेम्ड दैट अंडर हिज प्रेसिडेंसी द यूनाइटेड स्टेट्स वाज प्राउडर दैन एवर बिफोर. President Trump, जी हाँ, उन्होंने promise किया the huge political rally to stamp his brand on the national celebrations. He largely stuck to the more traditionally patriotic script. ढाई सेंचुरीज, जी हाँ, 2.5 centuries की बात हुई अमेरिकन रिपब्लिक के बारे में बात करते हुए. He said that they have stood as the crowning achievement of human history. On stage, he hailed veterans from World War II and the Korean and Vietnam Wars, but he then hailed the latter two as examples of the battle against communists, reprising the message from his speech on July 3rd at the iconic Mount Rushmore Monument. उन्होंने साथ ही में ये कहा दैट इनके जो वॉरियर्स हैं, दे डिड नॉट फाइट कम्युनिज्म ऑन बैटलफील्ड्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ओनली टू हैव दैट मेनेस रियर इट्स अगली हेड राइट बैक हियर इन अमेरिका, एंड देन ही सेड दैट ही इज नॉट गोइंग टू लेट इट हैपन. Of course, Trump has repeatedly hammered home the theme recently ahead of November's midterm elections after the anti-establishment left of the Democratic Party won a string of US primary victories. It's like a cancer. You've got to cut it out. That is the words of President Trump. He also talked about the recent military campaigns against Iran and Venezuela, saying Washington had wiped out Tehran's military. Well, more on the world news in just a little. फिलहाल के लिए बंदिश बैंडिट्स आर वेटिंग फॉर अस विद जावेद अली. रियल म्यूजिक, ब्यूटीफुल म्यूजिक, लव इट. आपके साथ सुनने में और भी मजा आता है. गुड मॉर्निंग एवरीवन.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वाल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: ऑलराइट इस समय बॉलीवुड की खबर देते हुए आपको मैं बताना चाहती हूँ अल्फा के बारे में. यस, वी बीन टॉकिंग अबाउट आलिया भट्ट एंड शर्वरीज अल्फा एंड हाउ बॉलीवुड एक्शन विद फियरलेस लीडिंग लेडीज. भाई बहुत ही खुशी हो रही है मेरे को इन दोनों को देख के. गॉश, आई हैव बीन वॉचिंग दी बिहाइंड द सीन्स, इनकी जो ट्रेनिंग के वीडियोज है, ओ माई गॉड. सीरियस हेडलाइंस with a not so serious vibe, only on the morning show on Radio Masti 24/7. Well, on the morning show, time for the Bollywood update. Action films, जी हाँ, एकदम strange नहीं है to Bollywood and the glory of being a fan favorite genre. लेकिन ये जो essence है, ये often gets lost due to unrealistic techniques and superficial moves. लेकिन उसी के बीच में release हुई है अल्फा, जो इस समय सिंगापुर में भी दिखाई जा रही है. इट्स अ जीवी एक्सक्लूसिव फिल्म जिसमें आलिया भट्ट और शर्वरी, जी हाँ, वाओ, ये दोनों के दोनों एक्ट्रेसेस को हमेशा हमने मोस्टली देखा है रोमांटिक ड्रामास में, इमोशनल टर्मोइल में, मतलब इस तरह से देखा है, लेकिन नेवर बिफोर हैव वी सीन एडवेंचर थ्रिलर एंड देयरफॉर कीपिंग द गर्ल्स एट द हार्ट ऑफ एड्रेनलिन फिल्ड सिनेमा. क्योंकि हम देखा जाए तो औरतें जो है ना, नॉर्मली द वुमन इन द इंडस्ट्री हैव कंसिस्टेंटली उनको पोर्ट्रे किया जाता है एज अ साइड कैरेक्टर, अ विश टू अकम्प्लिश, एलिमेंट टू बैलेंस जो इधर उधर चल रहा होता है उसके बीच में उनको दिखाया जाता है. लेकिन इस समय दे आर इन द सेंटर ऑफ एवरीथिंग. मतलब आप सोचिए, ऑडियंसेस उन्होंने अप्रिशिएट किया है ह्यूमर को, इमोशनल बैक स्टोरी को एंड द थ्रिल्स इन द भट्ट लेड फिल्म विच इज अल्फा. राइट नाउ बहुत ही बढ़िया रिव्यूज आ रहे हैं. एफर्टलेस है, करिश्मेटिक कोरियोग्राफी है, बिलीवेबल एक्शन ट्रिक्स हैं. ये नहीं कि सडनली उनको लार्जर देन लाइफ दिखाया जाए कि लगे छोड़ना यार ये सारे ट्रिक्स. वेल, आई डू सजेस्ट दैट एक बार जाके आप देख लीजिए ये वाली फिल्म. इट इज डेफिनेटली समथिंग जहां पे लोग ये बोल रहे हैं द लाउडेस्ट चीयर्स वर फॉर द हीरो ऑफ द फिल्म विच इज आलिया. राइट, सो वो देख के मुझे और भी ज्यादा खुशी हुई. आप जाके ट्रेलर्स देखें. डेफिनेटली इट इज द एस्पियोनाज ड्रामा विच शुड नॉट बी लेफ्ट. इट्स अ कोल्ड ब्लडेड ट्रेन्ड असैसिन जो कि बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करते अनलेस वो अपने गोल तक जाए. वाओ, अमेजिंग. शर्वरी, अनिल कपूर, बॉबी डेओल एंड ऑफ कोर्स आलिया भट्ट, अमेजिंग. चलिए, एनर्जी अब ये सारी बात करके आई गई है तो अगला गाना एब्सोल्युटली एनर्जेटिक. बाय फॉर नाउ एंड आई एम कमिंग बैक इन जस्ट अ लिटिल बिट. जाना मत कहीं भाई.

0: दस का बीस।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: और इसी वीकेंड पर एक बहुत ही खास बात हुई, जिसको देखकर हमें ऐसा लगा कि 30 साल, जी हाँ 30 years after this project was first conceived, अब ये बिल्कुल पब्लिक प्रीव्यू के लिए शुरू हो चुका है, खुल चुका है. What an amazing feeling, guys. Good morning on the morning show. It's Renuka with you. And of course, I'm talking about the Circle Line. Serious headlines with a not so serious vibe, only on the morning show on Radio Masti 24/7. Keppel Cantonment and Prince Edward Road MRT stations ki baat kar rahi hu main, जिसको कि पब्लिक प्रीव्यू के लिए खोला गया था सैटरडे जुलाई 4th को. जी हाँ, एंड दैट मार्क द कंप्लीशन ऑफ द सर्कल लाइन मोर देन 30 इयर्स, जैसे कि मैंने कहा, आफ्टर द प्रोजेक्ट वाज फर्स्ट सोचा गया था, कंसीव किया गया था. ये तीनों स्टेशंस इस समय ओपन है टू द पब्लिक अंटिल ऑफ कोर्स 9 PM थे ओपन ऑन सैटरडे, लेकिन फ्री ट्रैवल भी इंक्लूडेड था, जो कि आपने मिस कर दिया अगर आप नहीं गए. और अब आप जा सकते हैं जुलाई 12th से, जी हाँ, टू यूज द पैसेंजर सर्विस. ये जो कंप्लीटेड लाइन है, इट स्पैन्स 39 किलोमीटर्स अक्रॉस 33 स्टेशंस, 12 इंटरचेंज स्टेशंस हैं, कनेक्टिंग कम्यूटर्स टू ऑल एग्जिस्टिंग एमआरटी लाइंस, ऐसा कहा एलटीए ने. साथ ही साथ में आपको बताना चाहेंगे दैट द ओपनिंग सेरेमनी फॉर द 6th एंड द लास्ट स्टेज ऑफ द सर्कल लाइन, एक्टिंग ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जेफरी सियाओ, उन्होंने ये कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है, इट हैड पास्ड थ्रू द हैंड्स ऑफ मेनी इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड वर्कर्स. मिस्टर सियाओ जो थे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में इन 2013 व्हेन द डिसीजन टू बिल्ड सर्कल लाइन स्टेज 6 वाज अनाउंस्ड, उन्होंने कहा ही इज इनक्रेडिबली ग्रेटफुल टू बी ओपनिंग द स्टेशंस टू द पब्लिक 13 इयर्स लेटर. Well, Stage 6, which was part of the Circle Line's original design years earlier, construction शुरुआत नहीं हो पाई क्योंकि land available नहीं था, लेकिन बिल्कुल उसके चलते ये बात भी complete करनी बहुत जरूरी थी. Former Tanjung Pagar railway station था बीच में, tracks थे, जिसको Singapore को return किया गया only in 2011, and the port terminals in the city once planned were firmed up to relocate them from tours. So बहुत कुछ बीच में इन्होंने इंतजार किया, changes आए, लेकिन फिर भी जो हमारा मकसद था वो एब्सोल्युटली अचीव किए बिना सांस नहीं लिया गया. मेरे दीदार को ये ऑलराइट, अब थोड़ा सा मूड बदल के अपने मंडे के अंदर थोड़ा और एक्शन लाते हैं रेडियो मसी 24/7 पर. जी हाँ, ये वाला गाना, एंड देन आई कम बैक वन लास्ट टाइम ऑन द मॉर्निंग शो. स्टेट
2: इट इज ऑन द ग्राम. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore. Check it out.

0: और जाते आते आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खबर तो देके ही जाएं कि हांगकांग एक्टर लॉरेंस ने अपना लाइसेंस किया है राइट्स टू हिज यंगर लाइकनेस टू अ प्रोडक्शन कंपनी, और अब वो कंपनी उनको यंग और यूथ 20 साल का बना के ही 62 राइट नाउ फिल्म ही रिलीज करने वाली है. वेल नॉट अ बैड, वेयर इज दिस वर्ल्ड गोइंग रियली. Serious headlines with a not so serious vibe only on the morning show on Radio Masti 24. सोचिए फिल्में रिलीज हो रही हैं, 20 साल का इंसान जो इस समय 62 ईयर ओल्ड है उसको दिखा के, और फिल्मों में वो प्रॉपर काम कर रहा है और वो इंसान देख रहा है कि हेलो मैंने तो शूटिंग भी नहीं करी एंड मेरी फिल्म रिलीज हो रही है. At a recent promotional event, अपने नए ड्रामा Deadly Sins के लिए 62-year-old Lawrence Ng की बात कर रही हूँ मैं. ही रिवील दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो यूज टू डिजिटली रिक्रिएट हिज अपेयरेंस 20 साल का उसको बना के एट एन अपकमिंग मूवी. एंड ही सेज वेल मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ा, मैंने तो शूटिंग भी नहीं करी और मैंने मुझे पैसे भी मिले अपनी इमेज बेचने के, और साथ ही साथ में ऑफकोर्स मैंने अपनी फिल्म देखी. वेल अकॉर्डिंग टू हिम ही सेड कि प्रोजेक्ट से ना ही सिर्फ उसको एक्सपीरियंस हुआ बींग अ लीडिंग मैन अगेन but also a very handsome payout. अब AI threat है कि नहीं है actors को, तो well he said नहीं threat नहीं है, believing that technology could create new opportunities in the film industry. Future में मैं बैठ के कुछ भी film कर सकता हूँ and I can still get the job done even if I break my legs, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. Well, he also made it clear that he has no concerns about his likeness being misused by the production company and the agreement, jo ki contract hai, usme sab kuch covered hai, toh he's not worried about it. Well, जैसे कि आप शायद जानते होंगे, this is a very huge actor, Lawrence Ng. He's actually 1983 में इन्होंने अपना showbiz debut किया था, and he's been the lead in Healing Hands, which showed from 1998 to 2005. So well, in the near future, you never know, आप क्या-क्या actors को देखेंगे जो शायद अब हमारे बीच में हैं भी नहीं, और उनकी फिल्में भी release हो सकती हैं. On Radio Masti 24/7 हो सकता है आप और मैं भी बहुत बड़े-बड़े actors बन जाएं. हमारी फिल्में भी रिलीज हो रही हो और शायद हमको पता भी नहीं हो, या पता हो लेकिन हमने शूटिंग ना करी हो. वेल थिंग्स आर जस्ट बिकमिंग वेरी डिफरेंट राइट. ऑन दैट नोट, यहां पर सब कुछ रियल है. जी हाँ बिल्कुल, हम सारे के सारे रियल है. मेरा गला भी इस समय जो खराब हो रहा है वो भी रियल है. अगर AI होता तो वेल इस आवाज में बिल्कुल भी खराश ना होती. ऑन रेडियो मस्ती 24/7 आई बिलीव रेडियो इज वन a medium which can keep you totally connected with the human side. So stay tuned with us. And of course, I'll see you very, very soon. Bye for now. Have a fantastic rest of the week, guys. This is Radio Masti 24/7, the morning show. Renuka signing off.
1: Radio Masti 24/7. Download Radio Masti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us.

0: बनाना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती बॉइस, आपकी चॉइस।
1: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे। सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश, योर डेली स्कूप ऑफ व्हाट्स हॉट, व्हाट्स वायरल एंड व्हाट्स वर्थ नोइंग, सर्व्ड फ्रेश विद ग्रेट म्यूजिक एंड माय अनबीटेबल चार्म, यू सी। Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje sirf Radio Masti 24/7 Live Fan.
1: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
2: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
1: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
2: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज, मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली on Radio Masti 24/7 Live.
1: For show timings, check out the Radio Masti 24/7 Live app. RJ Mugdha ke saath, gossip bhi, masti bhi, sarcasm bhi. Sab kuch sirf masti hangout.

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: नाचने का मन है?
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें। समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे
5: ना? करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।
1: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: एक स्टैटिक सुनना चाहेंगे? रिसर्च कहती है कि एक इंसान अपनी लाइफ का लगभग 90,000 आवर्स सिर्फ काम करते हुए बिता देता है। 90,000 आवर्स। अब इतना टाइम अगर हम काम को दे सकते हैं तो खुद को खुश रखने के लिए हम रोज 2-3 घंटे तो दे ही सकते हैं। तो इसीलिए ऑफिस खत्म, लैपटॉप बंद, नहीं बंद तो कोई बात नहीं, ऑफिस में है तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा मी टाइम ऑन कर लीजिए। हेलो सिंगापुर, आई नो इट्स मंडे एंड यू नो व्हाट, मंडे को क्या होता है, मंडे को जो अलार्म क्लॉक है ना वो भी बाकी दिनों से ज्यादा लाउड साउंड करती है। वीकेंड जो है आंख झपकते निकल जाता है और मंडे जो है हमें याद दिलाता है कि बॉस रियलिटी में वेलकम एवरीबॉडी, गॉन वेलकम वेलकम बैक, कोई ना जी वेलकम बैक। मैं हूँ आरजे मुग्धा और अगले कुछ घंटे हम सिर्फ गाने नहीं सुनेंगे, हम बातें करेंगे सिंगापुर की, हम हंसेंगे, इंटरेस्टिंग अपडेट्स जानेंगे, बॉलीवुड की गॉसिप को पकड़ के रखेंगे एंड इंटरनेट की सबसे हॉट के स्टोरीज के बारे में बात करेंगे। वैसे सारी बातों से पहले आज का दिन है 6 जुलाई और आज है इंटरनेशनल किसिंग डे। सो किसी तो क्या, मैंने फ्लाइंग किस कर दिया। देखो भाई, आज के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नहीं नहीं नहीं, पैनिक मत करो, इसका आइडिया सिर्फ इतना है कि लाइफ में प्यार अप्रिसिएशन अफेक्शन जो है उसको एक्सप्रेस करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है, तो जाओ और पपिया झपिया पालो तुम तो चाहे आप ड्राइव कर रहे हो, MRT में हो, घर पहुंच के फाइनली रिलैक्स कर रहे हो, या घर पहुंचने की तैयारी कर रहे हो, या बैठ के ऑफिस में सोच रहे हो आज तो घर जाएंगे पपिया झपिया पाएंगे। हाँ,
2: उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए।
1: अभी फिलहाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है आपको कंपनी देने की। मैं हूँ आरजे मुग्धा, मस्ती हैंगआउट शुरू हो चुका है। इस गाने के बाद आई विल बी राइट बैक।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: Have you ever noticed कि कुछ लोग सिर्फ खबरें सुनते नहीं, मतलब न्यूज सुनते नहीं है, उसका आंसर ना तुरंत ऐसे निकल जाता है उनके मुंह से। हेडलाइंस आती हैं तो उनका दिमाग एकदम दौड़ने लग जाता है, चाचा चौधरी से भी तेज। अगले स्टेप पर वो पहले पहुंच जाते हैं। करंट अफेयर्स देख लो, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, रैंडम ट्रिविया, कुछ भी, उनके पास हमेशा एक बहुत ही स्मार्ट सा रिस्पॉन्स तैयार होता है। अगर आप उन लोगों में से हैं या आस पास आपके कोई है तो आप उन तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि फैक्ट्स का फुल स्टॉक अगर आप रखते हो, वक्त आ चुका है उस टैलेंट को स्पॉटलाइट में लेकर आने का। मस्ती मीडिया नेटवर्क प्रेजेंट्स द लाइन सिटी चैलेंज, सिंगापुर स्मार्टेस्ट गेम शो, जहां पे नॉलेज विंस। अब देखो, ये कोई ऑर्डिनरी क्विज नहीं है, इट्स अ प्रॉपर गेम शो एक्सपीरियंस जहां पे आपको हॉट सीट, कैमरा, लाइट, एक्शन सब मिलेगा। जीके, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग। हर राउंड में आपकी नॉलेज ना वो टेस्ट होगी और आप जीत सकते हैं एक्साइटिंग कैश प्राइजेस। फॉर ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू पार्टिसिपेट, और पार्टिसिपेट करने के लिए भी कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसे कि आपको LION टेक्स्ट करना है, ये लिख करके 9151893 पर। हमारी टीम आपको क्वालिफिकेशन राउंड के लिए दो सवाल भेजेगी, जब आप ये लाइन लिख करके हमको भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर। अगर आप उसके बाद सारे प्रोसीजर्स को सही तरीके से फॉलो करते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी टीम आपको आगे के लिए गाइड करती जाएगी। पर हमारी टीम तक पहुंचने के लिए आपको फिलहाल LION लिखना है और भेजना है 9151893 पर। समझे? जल्दी करो।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: सिंगापुर में गेम खेलते हैं। मैं किसी एमआरटी स्टेशन का नाम लूं और आप उसकी कोई खास बात मुझे याद करके बताओ। लिटिल इंडिया, ओके, चाइना टाउन, गार्डन्स बाय द बे, इजी था ना? और बताए क्यों? क्योंकि सिंगापुर के एमआरटी स्टेशंस ना सिर्फ स्टेशंस नहीं होते, उनकी अपनी आइडेंटिटी होती है। यहाँ आर्किटेक्चर और आर्ट वर्क ना बस डेकोरेशन के लिए नहीं लगाए गए हैं, हर स्टेशन को उसके सराउंडिंग एरिया की हिस्ट्री, वहाँ के कल्चर और पर्सनालिटी से इंस्पायर होके डिजाइन किया गया है। जैसे कि नेपियर स्टेशन में बोटानिकल आर्ट वर्क आपको मिलेगा क्योंकि बोटानिक गार्डन्स के पास है ये। स्टीवन स्टेशन का ना बुकशेल्फ इंस्पायर्ड डिजाइन है, आसपास के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ये रिफ्लेक्ट करता है, समझे? और ग्रेट वर्ल्ड स्टेशन जो है उस एरिया के आइकॉनिक अम्यूजमेंट पार्क की लेगेसी को सेलिब्रेट करता है। ऑनेस्टली मुझे लगता है इसीलिए सिंगापुर एक्सप्लोर करना इज वेरी इंटरेस्टिंग। हर एक मतलब एवाडी भी इतना कूल है ना कि मैं क्या ही बताऊं। यहाँ पे सफर सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का नहीं होता है, हर स्टेशन एक नई कहानी सुनाता है। तो अगली बार जब आप एमआरटी का वेट कर रहे हो तो जरा फोन से नजर उठाइए और अपने आसपास देखिए, हो सकता है कि जिस स्टेशन पर आप रोज उतरते हैं उसकी कहानी आज तक आपने कभी सुनी ना हो।
2: कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था।
1: And that's the new thing you gonna explore. अपने आसपास देखो भाई, फोन से आके उठाओ, फिलहाल मुग्धा को सुनते जाओ।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
3: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
4: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: Have you ever thought, एक नन्ही सी बुकलेट आपके लिए कितने दरवाजे खोल सकती है? बस some pages, लेकिन उन पेजेस में लिखी होती है दुनिया देखने की आजादी। हेलो सिंगापुर, मैं हूँ आरजे मुग्धा, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं सबका फेवरेट मस्ती हैंगआउट विद योर तिरकिद्धा मुग्धा। क्या है ना कि हम बात करने वाले उन कहानियों के बारे में जो सरप्राइज करेंगे आपको, कभी इंस्पायर, कभी हंसाएंगे, और बीच में हम आपके फेवरेट गाने भी प्ले करेंगे। पर फिलहाल हम बात करेंगे उस दरवाजे की, उस बुकलेट की, जो आपके लिए बहुत स्पेशल है। एक नए ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स में शामिल हुआ है। रैंकिंग सिर्फ वीजा फ्री ट्रैवल की नहीं दी गई है, बल्कि द मोबिलिटी, द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऐसे फैक्टर्स को भी ना कंसिडर किया गया। और अगर ट्रैवल फ्रीडम की बात करें तो इस पासपोर्ट सर्वे में सिंगापुर फिर से दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट में अपनी जगह बना के रख रहा है। सोचिए, पासपोर्ट सिर्फ इमिग्रेशन पर वो एक थप्पा लगवाने वाली चीज नहीं है, उसके काम नहीं आता है। कभी कभी वो पूरी दुनिया को ये बताता है कि आप किस देश की पहचान लेकर चल रहे हैं। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ सीट बेल्ट बांध दीजिए, क्योंकि अगले कुछ और घंटे इस जर्नी पर आप मेरे साथ चलने वाले हैं। और फिलहाल मैं आपको लेकर चलूंगी आगे, क्योंकि हम लैंड करेंगे शो के सेकंड आवर में।
2: कभी कभी आदतें जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी आदतें वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है।
1: तो ये ऑफ कोर्स सीट बेल्ट बांध लीजिए, बिकॉज़ दैट्स द बॉलीवुड आर। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड, आई विल बी राइट बैक।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हेलो, पिक्चर खत्म होने के बाद लोग जनरली क्या बोलते हैं? यार भैसा बुजू पिक्चर, यार मुझे आ गया यार, मतलब ये वो एकदम शोशा, यहाँ पे क्या कहते हैं, अरे यार टाइम वेस्ट थी यार। लेकिन कभी किसी फिल्म ने आपको किसी इंसान की याद दिलाई है? ये सोचने का मौका ही नहीं दिया कि पैसा वसूल थी या पैसा वेस्ट थी। थिएटर्स में फिलहाल जो फिल्म रिलीज हुई है ना, अगर नहीं दिलाई है तो मैं दिला दूंगी। अल्फा का क्रेज जो है वो थिएटर हॉल्स में देखने को मिल रहा है, काफी अच्छी कमाई कर चुके हैं, रिस्पॉन्स काफी अच्छा देखने को मिल रहा है अल्फा को। आलिया भट्ट है, शर्वरी है, फीमेल लीड एक्टर्स में है ये, एंड दे आर द हीरोज विदाउट द केप्स एंड द कैप्स। वाओ, मुझे कोई ऐसी, चलो छोड़ो, अच्छा रहने दो, आई एम द हीरो, सुपर। पता है मुझे क्या लगता है, ये फिल्म देखने के बाद मेरे अंदर एक बहुत बड़ा चेंज इम्पैक्ट मुझे इस फिल्म ने किया कि हर किसी की लाइफ में एक अल्फा वुमन होती है। हाँ ठीक है, मुझे पता है सबकी मम्मी अल्फा वुमन है, मैं उस बात से डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनके अलावा भी हम बहुत सारी अल्फा वुमन से डील करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, स्टार्टिंग फ्रॉम योर मॉम टू योर बॉस टू योर सिस्टर, टीचर, whomsoever। हो सकता है राह चलते कोई आपको ऐसे दिख गई हो जिसमें लगा आपको यार ये तो अल्फा है, यार शी इज दी अल्फा, किसी की लाइफ की तो अल्फा होगी, कोई अवार्ड जीता हो, कोई कहानी हो उनके पीछे। सो दिस इज अ चांस फॉर यू, अगर आपकी लाइफ में कोई अल्फा वुमन है और उसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जो हमें इम्प्रेस कर सकती है, वो लिखकर भेजिए हमें विद अ स्टोरी, एंड इफ शी हैज वन एनी अवार्ड और एनी रिकॉग्निशन वो भी भेजिए 9151893 पर। लेकिन यहाँ पे एक और सरप्राइज है, आप अगर अल्फा देखने गए हैं और आपके पास आपका मूवी टिकट है एंड यू हैव द स्टोरी ऑफ द अल्फा वुमन, तो आप हमें ये सब चीजें भेज सकते हैं एंड माइट बी द टॉप 10 फर्स्ट एंट्रीज के टिकट का प्राइस हो जाएगा रीइंबर्स। नाउ जस्ट वांट टू लेट यू नो वन थिंग, टॉप 10 एंड टॉप फर्स्ट 10 एंट्रीज, ओके? तो ज्यादा शांत पिटी नहीं करेगा अपन इधर, सारी सीआईडी गुड़ी बैठी है, बस सारे खंगाल मारेगी अपन इधर, वीडू अपन से पंगा लेने के नहीं, अपने पास पूरे डेटा रहता है, समझ ले। सो अगर आपने अल्फा देखी है और आपके पास टिकट है, संभाल के रखना पॉकेट में, और अपनी अल्फा स्टोरी अगर आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं तो आपके पास मौका है, आप पूरे पैसे रीइंबर्स हो सकते हैं आपके, आपको बस उनकी कहानी विद प्रूफ भेजनी है हमें 9151893 पर। बाकी हम संभाल,
2: व्हाट झुमका, व्हाट झुमका,
1: चलिए जल्दी करिए, ओनली फर्स्ट 10 एंट्रीज गोना विन।
3: They were not chosen. They were created.
4: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
5: Alpha.
6: Alpha. Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
7: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
6: Alia Bhatt and Sharvari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
8: Alpha program उसका जुनून है, और जो भी उसके रास्ते में आता है, वो उसे मार देता है।
6: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.

0: और झुमका।
1: अब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
2: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 91518963.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: बॉलीवुड हैज अ रूल, जो गाना 50 साल बाद भी शादियों में बजे आप उस पे थिरके बिना रह नहीं पाए, आपके कानों में वो गाना पड़ते आप ढिंचिक हिलने लग जाए, पूरा बदन थिरकने लग जाए, दैट इज अ क्लासिक। और इस लिस्ट में अगर कोई गाना परमानेंट मेंबर है तो वो है महबूबा महबूबा, राइट? या इट्स वन ऑफ देम एक्चुअली। लेकिन आज एक ऐसा फैक्ट आपको बताने वाली हूँ जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। व्हाई? अकॉर्डिंग टू सम स्टोरीज एंड रिपोर्ट्स, शोले का ये आइकॉनिक गाना 1973 के एक ग्रीक सॉन्ग से इंस्पायर्ड था। लेकिन असली कमाल यहाँ पे हुआ, आरी बर्मन ने उस ट्यून को इंडियन फोक पावरफुल रिदम्स और अपनी सिग्नेचर स्टाइल के साथ ऐसा नया रूप दिया कि उसकी अपनी पहचान बन गई, और ऊपर से पंचम दा ने इसे खुद अपनी आवाज में गा दिया, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। और यही तो है बॉलीवुड का असली मैजिक। इंस्पिरेशन कहीं से भी आ जाती है, लेकिन टाइमलेस बनाना वो हर किसी के बस की बात देखिए होती नहीं है। इसीलिए आज भी इसके पहले दो बीट्स बचते हैं और आपको दो बीट्स का भी वेट नहीं करना पड़ता, टिंग होता और ओ ये तो ये वाला गाना ऐसा। दिस इज द मैजिक ऑफ महबूबा महबूबा। मुझे लगता है इसको बजा ही दें, क्यों?
2: महबूबा महबूबा महबूबा महबूबा
1: गुलशन में गुल खिलते हैं। चलिए यही गाना सुनते हैं।
0: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
3: Check it out.

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, dear मस्ती, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: Download Radio Masti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: आजकल एक प्रॉब्लम कॉमन है सबके साथ, भूख तो लगती है लेकिन समझ में नहीं आता कि खाएं क्या। कभी चिप्स खा लेंगे, कभी बिस्किट खा लेंगे और बाद में गिल्ट भी फ्री में साथ में लेके आती हूँ। ओ गॉड वजन बढ़ गया, ओ माय गॉड पेट में, ओ माय गॉड दिस दैट दैट। अगर आप स्मार्ट स्नैकिंग की तरफ स्विच करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन जो मैं लेके आई हूँ। जी जी, अरे जी जी मार्ट, जी मार्ट जरूर विजिट करिए। आपको पता है यहाँ पे एक बहुत ही एक्सक्लूसिव रेंज है क्रिशिवल नट्स की। दे आर फार्म फ्रेश, 100% ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबली पैक्ड है। क्रंची आलमंड्स, प्रीमियम कैश्यूज, रोस्टेड पिस्टैचियोज, हेजल नट्स, मैकेडेमिया नट्स ही मुझे बड़े पसंद है, पम्पकिन सीड्स, यानी टेस्ट भी है और न्यूट्रिशन भी। वैसे एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि नट्स जो है वो हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स का सबसे अच्छा सोर्स होते हैं। ये आपको लॉन्गर टाइम तक फुल फील कराते हैं आपके टमी को, हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं और बिजी लाइफस्टाइल में एक परफेक्ट एनर्जी स्नैक, ये जो आपकी कमी है ना उसको पूरा करते हैं। अगर इस गर्मी में बॉडी को नेचुरली कूल रखना है, जी जी मार्ट के पास ऑप्शन है गुलकंद, जरूर ट्राई करिए। फ्रेश रोज पेटल से बनता है ये, नेचुरल शुगर से बना हुआ है, ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक प्रिजर्व। सिर्फ मीठा नहीं है ये बल्कि बॉडी को कूल रखने में बहुत मदद करता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, एसिडिटी कम करता है, सहायता करता है उसमें एंड स्ट्रेस से आपको रिलीफ दिलाता है। तो ये जो टैरिफ वैरिफ बढ़ रहे हैं ना, इन सब से आपको राहत दिलाने में ये सब चीजें आपकी काफी मदद करने वाली है। तो gtmartonline.com पे जाइए, मतलब www.gtmart.com पे जाइए और वहां जाकर के अपने फेवरेट स्नैक्स ऑर्डर करिए घर बैठे।
2: We are the sounds of the streets.

0: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड?
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
3: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
3: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
4: जीजी
3: कृषि वल नट्स, ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
4: GG Mart, your personal grocer.

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: इश्क तेरा तड़पावे और इसीलिए शादी करना इज द बेस्ट ऑप्शन। वेलकम बैक। आमिर खान के लिए लगता है ये सीजन ना न्यू बिगिनिंग्स का है। शादी कर रहे हैं एक तरफ, रियल लाइफ में उनकी शादी की खबरें पूरे बॉलीवुड में चर्चाओं पे है। भाई एकदम ताल ठोक के सीना चौड़ा करके इज अनाउंसिंग 5 तारीख को शादी हो रही है मेरी गौरी से। मतलब रियल लाइफ की गौरी रियल लाइफ में अपनी हो ही गई है ना। हाँ, ही इज ऑल सेट टू मैरिज गौरी, नॉट दैट गौरी, दूसरी गौरी, रियल गौरी, गौरी स्प्राट। 5 जुलाई को वो एक बहुत ही इंटीमेट सेरेमनी में शादी कर रहे हैं। बट मेन बात ये नहीं है, मेन बात दूसरी है। 25 ईयर्स के बाद वो फिर से डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर के साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए रेडी है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, शादी गौरी से एंड आफ्टर 25 ईयर्स आशुतोष के साथ स्क्रीन भी शेयर करने वाले हैं। दोनों की जोड़ी ने हमको लगान दी है और हम एक कैसे भूल सकते हैं, मतलब बोलने की जरूरत नहीं, दैट वाज अ क्लास से। और अब सुनने में आ रहा है कि उनकी एक नई फिल्म है जिसका नाम हो सकता है ललकार। लगान की ललकार नहीं है, सिर्फ ललकार है। मैं तो लगान ललकार ऐसे जोड़ रही थी। तो फैंस के लिए एक्साइटमेंट ना, इट्स ऑलरेडी डबल, शादी ललकार आशुतोष गौरी, माय गॉड। एक तरफ नई लाइफ का चैप्टर है और दूसरी तरफ एक पुरानी ब्लॉकबस्टर पार्टनरशिप की कमबैक, कहने तो गलत नहीं होगा। वैसे बॉलीवुड का टाइमिंग बड़ा कमाल होता है, किसी का बैंड बाजा बारात चल रहा होता है, साथ में लाइट कैमरा एक्शन हो जाता है, एक पंत दो गाज। यार हमें ऐसे कर लेते ना कि उस मूवी में कोई शादी का सीन होता, आप उधर शादी कर लेते, शूटिंग की शूटिंग, शादी की शादी है। उत्तरी क्या आइडिया दिया मेरा पैसे। खैर शादी के बाद जो लड्डू बनेंगे ना तो इधर

0: जो आ दीजिएगा सिंगापुर। हाँ, हमने आपकी शादी के बारे में बहुत बातें करी हैं, बहुत बातें करी हैं, और अच्छी अच्छी बातें करी हैं। तो लड्डू खाना तो बनता है ना आमिर जी?
1: सुबी डूबी सुबी डूबी पंपारा, सुबी डूबी परंपा, सुबी डूबी सुबी डूबी नाचे क्यों पागल स्टपेन मान।
0: हाँ, वो भी अच्छे बूंदी वाले लड्डू, घी के, देसी घी के।
2: It is on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
3: Check it out.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: Hey hi, welcome back. This is me Mugdha. Oh my God, hey hi. आपको पता है hey hi कौन करता है? जिनका कोई अंत नहीं है और जिनके नाम के आगे तारारारा है, वो है अंतारारारा। Anyways, आदत लग गई मुझे hey hi बोलने की। Anyway, आगे बढ़ते हैं। एक वक्त था जो पेरेंट्स बोलते थे यार बच्चे कंप्यूटर से दूर रहो यार, हैक हो जाएगा। और आज का जमाना देखो जरा क्या हो गया। अब हैकर बोल रहा है AI जरा हेल्प कर दो ना यार। हैकर को यह है कि अब हेल्प चाहिए पड़ रही है। एक सिक्योरिटी रिसर्चर ने ना AI की मदद से एक ऐसी सिक्योरिटी फ्लॉ को ढूंढ के निकाला है जिससे अमेरिका के कई बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स के टिकटिंग सिस्टम तक एक्सेस मिल सकता था। नाउ थियोरेटिकली VIP पासेस से लेकर अगर आप देखें तो रेगुलर टिकट्स तक इशू किए जा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि रिसर्चर ने इसका मिसयूज नहीं किया, लाइक चला बड़ा अच्छा रे, बल्कि ना कंपनी को रिपोर्ट कर दिया और फ्लॉ को 24 घंटे में फिक्स करा दिया। इतना भी अच्छा नहीं होना होता यार। अब लेकिन ये स्टोरी एक और सवाल छोड़ के जाती है, AI आखिर है क्या? होमवर्क पार्टनर, ऑफिस असिस्टेंट, आपके अकेलेपन का पार्टनर, या फिर वो दोस्त जो कभी कभी थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है? एक बात याद रखिए, टेक्नोलॉजी कभी हीरो होती है तो कई बार विलन भी बन जाती है। पिक्चर काइंडिंग हमेशा इस बात पर डिपेंड करता है कि स्क्रिप्ट किसके हाथ में है।

0: तो फिल्म की कहानी लिख सकती है रे।
1: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: है वो ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
3: जीजी
2: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
3: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: डॉग रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: They were not chosen.
3: They were created. His mother's name was Jan. We will call her Sita. Alpha.
0: The newest chapter in the YRF spy universe.
4: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
0: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट।

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: सेलेब बनने के लिए आजकल आप या तो कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म दे दो, वो चाहिए होती है, या फिर सोशल मीडिया पे वायरल हो जाओ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का तस्मानिया, वहाँ पे एक ऐसा सेलेब आया है जो ना तो एक्टर है, ना इन्फ्लुएंसर है, ना तो किसी फिल्म का कोई कास्ट है, उसका तो कोई पीआर मैनेजर भी नहीं है पर उसका नाम है नील। But he is Neil the Seal. नील ना एक 5 साल का सदर्न एलिफेंट सील है और इसका वजन ऑलमोस्ट 500 किलो है। And you know the funniest part, नील को लगता है कि पूरा शहर उसका बेडरूम है। मर्जी पड़ते जनाब की जहां सो जाते हैं, कभी रोड पे सो जाते हैं, बीचों बीच, कभी किसी पोर्च पे जाके सो जाते हैं, कभी किसी के गेट के सामने सो जाते हैं, गाड़ियों के आसपास आराम फरमाते मिल जाते हैं। इसीलिए लोकल्स ने ना उनकी हरकतों को देखकर उनके लिए एक स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन हैवी स्लीपर। But there's a catch, any twist. नील ना कोई एक बार आके गायब होने वाला मेहमान नहीं है, अतिथि देवो भव टाइप सही है। वो हर साल 2 बार इस टाउन में वापस आता है, मतलब इतना रेगुलर विजिटर है कि लोगों को पता है अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, द पेंगुइन की तरह। हाँ, सोशल मीडिया पर ना उसकी वीडियोस मिलियंस व्यूज लेके पता नहीं कहाँ पहुंच चुकी हैं। अगर वो एक इंसान होता तो अभी तक करोड़पति, अरबपति, लखपति, खरबपति, पता नहीं क्या ही हो चुका होता। पॉपुलैरिटी के साथ ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, समझ रहे हैं आप। वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स जो है बार बार लोगों से कह रहे हैं कि नील से सेफ डिस्टेंस बना के रखिए, वो चाहे इंटरनेट का फेवरेट क्यों ना हो, कितना भी क्यूट ही क्यों ना दिखता हो, लेकिन आखिर में वाइल्ड एनिमल है। अगर आप उसके बहुत पास जाएंगे ना, धपाक धपाक धपाक धूम धपाक हो जाएगा आपका। अथॉरिटीज ने उसको रिलोकेट करना पड़ सकता है अगर आपने उसको परेशान किया तो। मुझे लगता है स्टोरी का सबसे प्यारा लेसन बताया गया, हर सेलेब को ना स्पॉटलाइट पसंद है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, इसको नहीं है, इसको तो पब्लिक जो प्रॉपर्टी है ना अपना दुश्मन लगती है। हाँ, तोड़ता फोड़ता रहता है। Danny's cute यार।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: आपकी नॉलेज, आपकी जीत।
2: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: प्यार में लोग क्या क्या करते हैं, कोई गिटार लेकर बालकनी के नीचे पहुंच जाता है, कोई ट्रैम्पोलिन पे कूदता कूदता प्रपोज करता है, कोई एयरपोर्ट से सरप्राइज देता है, कोई एयरपोर्ट के पीछे पीछे दौड़ के सरप्राइज देता है, और फिर होते हैं कुछ लोग जिन्होंने सीधा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे चढ़ जाना होता है और वहां प्रपोजल प्लान करना होता है। व्हाई एम आई सेइंग दैट? न्यूयॉर्क की ना आइकॉनिक बिल्डिंग है, सबको पता है, उसके टॉप पर एक बैनर खुला जिस पर लिखा था व्हेन द पावर ऑफ लव बीट्स द लव ऑफ पावर एंड द वर्ल्ड नोस पीस। अच्छा, मतलब ये एक प्रपोजल था बेसिकली। और उसके बाद एक स्टंट, एक मैरिज प्रपोजल, ओ माय गॉड, दैट वाज आइकॉनिक। एंडिंग बॉलीवुड वाली बिल्कुल नहीं थी, लेकिन एक कपल था जो एम्पायर स्टेट की बिल्डिंग पे चढ़ गया, लेकिन पुलिस ने भी ना नीचे कहा कि आओ आओ, ऊपर हो जाएगा तो आप आ जाना नीचे, हम हैं आराम से खड़े हैं, टेंशन मतलब कोई काम नहीं हमारे पास, हम इधर ही हैं, फुल डे आपका वेट करेंगे, कर लो आप जो कर रहे हो फिर आना नीचे, वी आर हियर बेबी फॉर यू, फिर हम खेलेंगे प्रपोजल प्रपोजल। फिर वो नीचे आए, फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया। सच्ची बोलू, प्यार में हाइट इंपॉर्टेंट नहीं होती है। हाँ, नहीं होती है। लिमिट्स याद रखना भी जरूरी होता है। हाइट से ज्यादा लिमिट जरूरी होती है। जैसे प्रपोजल यादगार तो हो गया ना, इनके जाने के बाद भी लोग इनका प्रपोजल तो याद रखेंगे, और ये भी हमेशा याद रखेंगे, है ना।

0: நன்றி நமஸ்காரம்.
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ.
2: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ.
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर.
3: जीजी
2: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com. प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस. बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com.
3: GG Mart, your personal grocer.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: एंड सो बस केवल माइक चला रहा हूँ। इसी के साथ आज का मस्ती हैंगआउट का सफर यहीं पर खत्म होता है। आज हमने बहुत सी बातें शेयर की, इंटरेस्टिंग बातें, बॉलीवुड की बातें, ओ माय गॉड वाली बातें, बहुत सी बातें। पर जाने से पहले एक छोटी सी बात आपको याद दिलाऊं। अगर कभी आपको लगा, आपने सोचा कि यार मेरी आवाज में बहुत दम है, काश मैं उधर माइक के तरफ बैठ करके एक शो होस्ट कर पाता, है ना, या फिर माइक्रोफोन को देखते आपके अंदर का वो एंटरटेनर जागता और आपको लगता है कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। मैं समझ रही हूँ, मैं राहुल नहीं हूँ, इट्स ओके। तो आई थिंक दिस इज द टाइम, वक्त आ गया है। सोचिए, मस्ती मीडिया नेटवर्क लेकर के आया है द आरजे एकेडमी। आपको सोचना नहीं है, आपको तो काम करना है। आप चाहे बिगिनर हो, अपनी आवाज, अपनी होस्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, या आप अपने बारे में कुछ और एक्सप्लोर करना चाहते हो अपनी आवाज के बारे में, यहाँ मिलेगा फ्लेक्सिबल हाइब्रिड ट्रेनिंग, इंडिविजुअल फोकस सिलेबस, और सबसे खास बात, सिलेक्टेड ट्रेनीज को रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर शो होस्ट करने का मौका। एज आपकी 14 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए और पैशन डेडिकेशन आपका डेफिनेटली होना चाहिए। मौका है आपको अपने सपनों को जी ले जरा बंधु, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। चलिए आपको ये बता दूं कि माइक्रोफोन सिर्फ एक गैजेट नहीं है, आपकी पहचान बन सकता है। एक छोटा इंट्रोडक्शन लेकर भेजना है आपको info@radiomasi.com.sg पर, और वो इन्फो देख करके ही हम समझ जाएंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कितनी जल्दी भेजना है, क्योंकि आप सब इक्वली टैलेंटेड हो, राइट? इंतजार रहेगा। आज के लिए इजाजत चाहती हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सपने देखते रहिए, क्या पता अगली बार इस आवाज को आप रेडियो मस्ती पर सुने और जो आवाज हो वो आपकी हो, है ना। बाय सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
3: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप। जोश में रहो। थकन चारों ओर है, चलते जाओ। पहुंचता कौन है? चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
0: चेक इट

Your Musty Music Cafe

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: सिंगापुर, प्रिपेयर फॉर इंपैक्ट।
2: 3, 2, 1।
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
4: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे,
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे। They are fresh. They are hot.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट।

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
2: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
1: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
2: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
4: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं।
5: द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
6: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hu.
7: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट।

0: हाँ, तुम ही डीजे, तुम ही हो। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, उसे वी प्ले। बड़े बड़े हिट्स सुनो।
1: दिल कभी कभी तो दिमाग भी धोखाधड़ी करने लगता है। By God. Hello, hi, welcome, namaste, Radio Masti 24/7 live पर. Good evening, 5:00 हो चुके हैं, यहाँ पर 5 मिनट और शुरू हो चुका है. Masti Voice आपकी choice. Yes, मंडे वाली शाम है और वो आपके और मेरे नाम है. Of course, हम आ गए हैं कि भाई request का दरवाजा यहाँ पर खोल दे और ये जो blues है मंडे वाले, अब वो उनको थोड़ा सा कहे कि देखो हो गया, अब तुम्हारा time हो चुका है खत्म, अब हमारा वक्त शुरू होता है. हम सुनेंगे वो वाले गाने जो हमारे choice के होंगे और हमारा मूड हो जाएगा परिवर्तन. हाउ यू थिंक अबाउट दैट? बताइए बताइए, कैसा रहा आपका वीकेंड, कैसा रहा आपका आज सुबह से मंडे? अबाउट मी, देर आर दीज डेज, ओके, जहां पे आप कोई भी चीज कर रहे हो वो सही हो ही नहीं रहा है. होता है आपके साथ? आपके साथ भी हुआ होगा या आपके साथ पता नहीं. डू सेंड मी अ हाई अगर आपको लगता है, इफ यू कैन रिलेट विद मी, दैट देयर आर डेज, ओके, मतलब आप कुछ मतलब अच्छे इंटेंशन से भी कर रहे हो, नॉर्मली कर रहे हो, आप जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, एंड देन यू गो लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद दिस डे. बट वेल, कुछ नहीं, यू ब्रीद इन ब्रीद आउट एंड देन या कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, All is well, all is well. वैसे भी आमिर खान अब तो जो कहेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा, जिस तरह से जो चल, oh my god, he is too good. I mean, yeah, मैंने ना ऐसी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट आ रखी है ना उनके लिए कि मैं बता ही नहीं सकती. बट वेल, इन सब के बारे में बात करेंगे, लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट, सारी की सारी खबरें लेकर बिल्कुल यहाँ पे मैं तैयार हूँ. अब आपका काम है यानी कि सोचना है कि कौन सा गाना रिक्वेस्ट करना है, सो आप वो करें और मुझे बताएं 9151893 पर, और तब तक मेरे कुछ पसंद के गाने यहाँ पर साथ साथ में सुनते रहे. देवेंद्र पाजी, आपका रिक्वेस्ट बिल्कुल पहुंच चुका है, आपकी टाइमिंग भी पहुंच चुकी है, कोशिश करूंगी कि उसी वक्त जो है आपका रिक्वेस्ट बिल्कुल प्ले कर पाऊं, है ना. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, क्योंकि तुम ही हो बंधु और सखा भी तुम ही हो, पता है ना आपको. गुड इवनिंग.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर। थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।
3: गाना बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
4: 5:17 रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराब के साथ, एंड यहाँ पर चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। और चॉइसों की तो हम बात ही क्या करें भाई। सबसे पहले तो वी हैव टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज एवरीबॉडी हैज बीन टॉकिंग अबाउट इट। ठीक है भाई, हमारे आमिर खान अब वापस से मैरिड हो चुके हैं, उनका सिंगल का स्टेटस अब वापस से हट चुका है, मैरिड टू गौरी। यस, किसने पता था, किसने सोचा था लगान में जो गौरी थी, मतलब एक तो

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट 5:31 by the studio clock, Radio Masti 24/7 live पर अब चलेंगे सीधा ट्रैफिक अपडेट लेने. हैवी ट्रैफिक आपको इस वक्त मिलेगा ऑन BKE towards Woodlands at SLE exit. हैवी ट्रैफिक की खबर ऑन BKE towards Woodlands at Woodlands Road exit. और मिलेगा हैवी ट्रैफिक ऑन CTE towards SLE between चलान भागिया एंड मर्चेंट रोड. ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट. बाकी कॉन्टेस्ट एक है, उसका अपडेट बिल्कुल आपको देना बनता है. What is it about? क्या करना है, कैसे मिल पाएगा आपको वो इनाम और क्या है वो इनाम, सब कुछ बताएंगे लेकिन इस गाने के उस पार. सो स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
4: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
5: द न्यूएस्ट चैप्टर इन द YRF स्पाई यूनिवर्स।
6: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
5: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडिया फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट।
7: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है।
5: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island wide at the cinemas near you. Brought to you by Homescreen Entertainment.
0: That's right, भाई सुना तो होगा और देखा भी होगा, और आजकल तो मतलब एक्शन सीक्वेंस वाह क्या ही था इसमें, कमाल कमाल धमाल बेमिसाल। Did you get a chance to watch it? नहीं तो भाई बनता तो है, एंड आई विल गिव यू ऑल द मोर मौका टू व्हाई यू कैन एक्चुअली गो। क्या पता ये जो आप जाए तो वो आपको इतना खले भी ना, नहीं कितना अच्छा लगता है ना जब ऐसी कोई बातें करता है। रुको रुको बताती हूँ। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं
8: आपके हिट्स, आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
0: That's right, और अल्फा देखने जाने की चॉइस आपकी बिल्कुल होनी चाहिए। एंड हाउ, देखिए क्या होता है ना कि सी अल्फा क्या है, हमारे यश राज फिल्म्स की YRF स्पाई यूनिवर्स की ये एक नहीं, दिस इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल लेड जो है स्पाई थ्रिलर मूवी है। वेल पिछले हफ्ते फ्राइडे 3rd of July को ये रिलीज हुई एंड एवरीबडी इज लाइक इन ऑ ऑफ एवरीथिंग दे आर काइंड ऑफ वॉचिंग ऑन द स्क्रीन। नाउ If you have been kind of planning कि भाई हमें जाना चाहिए, वक्त नहीं है, ये है और बहुत सारी चीजें जो दिमाग में चलती रहती हैं, भाई we also thought that हमें भी उसमें थोड़ा सा contribute और help तो करना ही चाहिए, helping तो बहुत अच्छी बात होती है। So well, Alpha movie जो है because it is based on that, तो हम भी जानना चाहते हैं that हमारे आसपास बहुत बार आपने देखा होगा there are women whom you see that भाई ये तो alpha lady है। कभी किसी ने बहुत एक ब्रेवरी का काम किया, मे बी किसी वुमनिया को आपने देखा हो जिसने उसके एक्ट ऑफ काइंडनेस पे आपको देखकर लगा हो कि वी नीड मोर पीपल लाइक हर यार। सो इफ यू नो एन अल्फा वुमन लाइक आई एम डिस्क्राइबिंग वन, एंड इफ यू हैव सीन सच काइंड ऑफ अ वुमन एंड यू हैव थॉट इन योर माइंड दैट भाई ये तो पूरी अल्फा है, लाइक the deeds she does, the things how she does it, she is an alpha woman, then let us know, bilkul aap hame bataiye aur kyun aap unko alpha woman mante hain, wo reason hamare sath share kariye. So that is one, and agar usi ke sath आप भेज देते हैं आज से लेकर फ्राइडे तक, इसके बीच में if you go and watch alpha, That is right. आप एक बार देख कर वापस आएंगे तो first 10 जो है हमारे पास जो भी भेजेगा अपने टिकट, not tickets, okay? अपना टिकट जो हमें भेजेगा, of course उसमें हमें उसका रिसीट का सब कुछ चाहिए, डेट एंड everything, and first 10 we will reimburse आपकी टिकट, टिकट्स नहीं, टिकट, one ticket, we are going to reimburse that one ticket, but First come, first serve. हम सिर्फ 10 टिकट ही देंगे आपको रीइंबर्स करके। सो वेल अब आया ना थोड़ा सा इंटरेस्ट. करेक्ट. सो गो वॉच अल्फा, कम बैक एंड सेंड अस योर टिकट एंड बताइए कौन है वो अल्फा वुमन जिनको आप नॉमिनेट करना चाहते हैं. एंड बस या आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड डील. थिंक अबाउट इट. देर यू आपको टाइम और थोड़ी देर में आपको वापस से इसको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूंगी. लेकिन फिलहाल के लिए एकदम अल्फा गाना प्ले करेंगे. सैफायर नहीं, शावा. करेक्ट. अब तो मैं सैफायर बुलाती भी नहीं हूँ, मैं तो टाइप भी शावा करती हूँ, फिर याद आता है कि नाम तो सैफायर है.

भाई कमिंग अप नेक्स्ट इज मस्ती वॉइस आपकी चॉइस पर हमारे देवेंद्र पाजी का गाना। जी हाँ, वो पूरा गाना मुझे भेजते हैं सो दैट बिल्कुल कोई भी गलती ना हो जाए, 1% भी। परफेक्शन इसको भी कहते हैं। देवेंद्र पाजी आपका गाना बिल्कुल रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू रिक्वेस्ट अ सॉन्ग जस्ट लेट मी नो, 9151896 है मेरा नंबर।

0: नीचे तुम ही हो. मस्ती वॉइस आपकी चॉइस. यू से वी प्ले. बड़े बड़े हिट सुनो. वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतर आपके साथ. यहाँ पे चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस. और इससे पहले कि मैं अगले हमारे प्रिय डियर श्रेणी की चॉइस यहाँ पे प्ले करूँ, लेट्स टेक अ लिटिल बिट ऑफ सिंगापुर का भी अपडेट. एंड यू नो वन ऑफ द मेनी थिंग्स आई लाइक अबाउट सिंगापुर, एक और चीज ये है कि इट नेवर स्टॉप्स अपग्रेडिंग इटसेल्फ. ठीक है. एंड इफ यू आर समवन जो फेरी लेते हैं टू बताम और इवन हेड्स आउट ऑन अ क्रूज वंस इन अ वाइल, छोटा सा अपडेट आपके लिए यहाँ पर. सिंगापुर क्रूज सेंटर जो है मूव कर रहा है टू अ ब्रांड न्यू हार्बर फ्रंट पैसेंजर टर्मिनल स्टार्टिंग दिस वीक. ये जो नया टर्मिनल है इट्स लिटरली अबाउट 70 मीटर्स अवे फ्रॉम द करंट वन एट 5 हार्बर फ्रंट एवेन्यू. सो या आपके जो फेरी रूट्स है, क्रूज के स्केड्यूल्स है एंड डेस्टिनेशंस, दे ऑल रिमेन एग्जैक्टली द सेम. सिर्फ चेक इन का लोकेशन जो है वो चेंज हो रहा है एंड It's okay and it's a good thing. Destination change नहीं है, बस departure point change हो जाता है. यहाँ पे योगेश जी जो है, मैं अच्छी बात करती नहीं हूँ और योगेश आ जाता है यहाँ पर, फिर कहते हैं कि ओहो हो क्या बात करती. आइए जी आइए, गुड इवनिंग, कैसा गया आपके मंडे का दिन. सो वेल, मैं यही कह रही थी कि भाई ये जो है थोड़ा सा यहाँ पर एड्रेस का चेंज हो गया है एंड ये अपग्रेड काफी दिनों से प्लान किया जा रहा था, बट इट इज गेटिंग इफेक्टिवली, मतलब आज से इस हफ्ते से बिल्कुल ये इन ऑपरेशन शुरू हो जाएगा. सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर बाताम का गेटअवे या फिर क्रूज वगैरह, बस एक बार नए टर्मिनल का एड्रेस चेक कर लेना जस्ट बिफोर यू लीव. अब आते हैं हमारे अगले जो है रिक्वेस्ट की, जो कि हमारे श्रेणिक जो है उन्होंने यहाँ पर किया है. इन्होंने भी एक बहुत हटके गाना यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है, बट आई हैव दैट गाना, लेट मी टेल यू दैट. सो ही सेइंग द लिरिक्स ब्यूटिफुली कैप्चर द बिटर स्वीट पेन ऑफ पार्टिंग, एम्फसाइजिंग दैट इवन व्हेन लव्ड वंस आर सेपरेटेड द स्वीट मेमोरीज एंड फ्रेग्रेंस ऑफ टाइम स्पेंट टुगेदर विल रिमेन फॉरएवर. आई एम मिसिंग समवन डियरली टुडे, अ मेमोरी फिल्ड विद लव, जॉय एंड इनोसेंस. वाओ, so well put and beautifully written Shrenik. So well, without wasting any time, Masti Boys aapki choice hai ye. So aapki choice Sara Cooper from the movie Nikah. This is your gana.
1: Abhi alvida mat kaho.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस उसे वी प्ले बड़े बड़े हिट सुनो आई ना फील बिल्कुल आई ना आई नो रेडियो मसी 24/7 लाइव पर ड्रॉप के साथ इट्स मंडे आई एम श्योर मतलब मैं याद दिला रही हूँ अगर तो आपको ऐसी फील आने लगी है कि ये क्या बात है जैसे कि यहाँ पे जो है 6:04 पर योगेश को कह रहा भाई वेंसडे वाली फील आ रही है मतलब क्या बात है मैंने कहा कि हमने डिसाइड कर लिया है कि हम मंडे को फ्राइडे बना के छोड़ेंगे मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको मंडे भी फ्राइडे जैसा लगने लगेगा एंड दैट इज सच एन अमेजिंग थॉट राइट जिस दिन ये हो गया ना मतलब मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ही कुछ अल्टीमेट क्रैक कर लेंगे बट वेल दिस इज मस्ती वॉइस आपकी चॉइस अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है गुड इवनिंग नमस्ते वेलकम वेलकम ये हमारा रिक्वेस्ट शो आप बिल्कुल बिंदास होके मेरे को बता सकते हैं आपको कौन सा गाना सुनने का मूड है योगेश बताओ भाई क्या सानुदा का कौन सा गाना सुनने का एकदम विचार खड़ रखा है बाकी सब भी जो अभी अभी ट्यून इन हुए हैं आप भी सोच के मुझे बताइए 9158963 पर कौन सा गाना सुनने का मूड है और मैं वो गाना आपके लिए यहाँ पे प्ले करूंगी व्हाइल ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग लेट्स सी व्हाट्सएप डूइंग ओवर भाई व्हाट्सएप जो है वो तरक्की पे तरक्की किया जा रहा है अपग्रेड पे अपग्रेड लाया जा रहा है अभी कुछ दिन पहले आई थिंक पिछले हफ्ते ही बात कर रहे थे कि ये अपग्रेड हो गया ये भी हो गया सो नाउ व्हाट्सएप जो है इज इंट्रोड्यूसिंग दिस न्यू वे एंड ये अभी सिर्फ और सिर्फ आईफोन वालों के पास जो है जी हाँ ये दिया जा रहा है तोहफा सो आईफोन यूजर्स बेसिकली जो है अब देख पाएंगे कि जब उनके कॉन्टैक्ट जो है व्हाट्सएप पे दे आर एक्टिव ऑन द ऐप और नॉट आप कहोगे ये तो हमें टिकटॉक से पता चल ही जाता था ना ना जी ना जा अब आपने तो वो फिगर आउट कर ही लिया होगा ना कि एक टिक दो टिक फिर कोई अगर टिक डिसेबल कर दे तो फिर वो ना आपने पता ना उनको पता वैसा वाला बहुत सारी चीजें हैं सो द लेटेस्ट व्हाट्सएप बीटा फॉर iOS adds this small green dot that appears next to the profile photos of your contacts when they are online अभी ये जो है सिर्फ iOS के ये जो बिल्कुल एक पायलट प्रोग्राम के जैसे उधर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है द रोल आउट इज क्वाइट ग्रेजुअल सो मोर बीटा टेस्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू रिसीव इट ओवर द नेक्स्ट कमिंग फ्यू वीक्स भाई हम एंड्रॉइड वालों को कोई जल्दी नहीं है आराम आराम से दो लेकिन ये ग्रीन डॉट देने का मतलब क्या है क्योंकि अभी तो आप दे रहे हो ग्रीन डॉट ठीक है फिर थोड़े टाइम के बाद कहोगे कि लेट अस गिव यू सम मोर प्राइवेसी कोई अगर आपको नहीं बताना है कि आप ऑनलाइन हो तो उसके लिए आप ये वाली सेटिंग कर ले है ना क्योंकि हर किसी को नहीं दिखाना है कि हम ऑनलाइन है या दिखाना है कि हम ऑनलाइन इट्स लाइक योर मैसेंजर्स राइट व्हेन यू आर ऑनलाइन यू आर शोन ऑनलाइन ऑन द मैसेंजर सो या आई थिंक ये सारी चीजें थोड़ी सी मिक्स होती हुई जा रही है बट आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस वन आई डोंट नो लेट मी जस्ट लेट मी नो 9158963 पर चाहिए वो ग्रीन डॉट ताकि पता चले आप ऑनलाइन हो व्हाट्सएप पे कि नहीं चाहिए है ना एक ही चीज चाहिए कोई कह दे आके आई लव यू टूरूर टूरूर मैं तो अपने आप से कह देती हूँ आजकल मुझे किसी से कोई उम्मीद ना रही रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पे कमिंग अप इज दिस गाना आशकिन की आवाज़

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
3: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड?
4: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
5: बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
6: आई थिंक इट वॉज ऋतिक रोशन, शर्वरी एंड आलिया। जब ये तीनों एक साथ एक फ्रेम में आए, ओ हो हो, लाइक आई एम जस्ट डाइंग टू नो कि उसका वो जो सीन क्रिएट हुआ, वो जो ऑरा क्रिएट हुआ, वो कितना ही गजब हुआ होगा। वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, मैं अंतरा आपके साथ ही यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल बने हुए हैं और यहाँ पे चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। यहाँ पे आपके चॉइस के गाने बिल्कुल मैं प्ले करने के लिए बेकरार हूँ। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट लेट मी नो 9158963 पर। एंड नाउ व्हाइल यू आर थिंकिंग, आई नो कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है, अचानक से कोई पूछ ले अच्छा अपना फेवरेट गाना बताओ, फेवरेट गाना बताओ, इतनी लिस्ट लंबी होती है कि फेवरेट गाना बताना ही नहीं होता। और अक्सर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है कि जो मैं बता के आती हूँ, घर आके मुझे लगता है कि यार इससे बेटर मैं कर सकती थी। Did you ever feel like that when you later आपने, और ये मेरे तो आर्ग्यूमेंट्स के साथ भी ऐसा होता है कि जब पूरा झगड़ा हो जाता है एंड मुझे बहुत ही ऑड टाइम पे याद आता है कि आई वुड हैव, आई एम केपेबल ऑफ गिविंग बेटर आंसर्स ओवर देयर। क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, क्यों? वेल फिलहाल यहाँ पर वापस आते हैं एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अल्फा एंड आई एम टेलिंग यू कि अगर आप जाके देख कर आते हो अल्फा, तो फिर हमने सोचा कि लेट अस हेल्प यू एज वेल। अल्फा जो है वो रिलीज हो चुके हैं आइलैंड वाइड लास्ट फ्राइडे, विच वॉज 3rd of July। होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट जो है उन्होंने रिलीज किया हुआ है यहाँ पर। एंड यस, वी हैव बीन मीनिंग टू काइंड ऑफ पूरा जो है ये जो सेटअप तैयार किया गया है, सबसे पहली फीमेल लेड स्पाई थ्रिलर का, वी वांट यू टू एंजॉय दैट। सो अगर आप इस हफ्ते लाइक आज से लेकर फ्राइडे के बीच तक इफ यू डिसाइड एंड गो फॉर दिस मूवी अल्फा, आप देखकर आते हो, तो फर्स्ट 10 जो हमारे पास टिकट भेजेगा अपना, वी विल रीइंबर्स योर टिकट, नॉट टिकट्स, विच मीन्स सिर्फ एक। ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हैं, आपकी वाइफ जा रही है, आपके घर में सब लोग, मतलब सबको

चले गए और सबके टिकट्स हमें भेज दिए, ऐसे नहीं होता है जी. आप अगर जा रहे हैं, आप हमें अगर टिकट भेज देंगे अपना, तो फर्स्ट 10 जो हमारे पास आएंगे उनको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से बिल्कुल रीइंबर्स कर दिया जाएगा, है ना, कमाल की बात. और उसके साथ आपको बताना पड़ेगा कि कौन है वो अल्फा वुमन whom you look up to, a woman you have seen maybe faced a lot, done a lot for the society, for the community around her, maybe because of her kindness, maybe because of her bravery, maybe because she stood up for something jiske liye baki sab thoda sa hichkicha rahe the. I want you to recognize that alpha woman and send us kisko aap nominate karna chahte ho being that alpha woman. So या जो सेंड इट टू अस. तो अगर देखना है जाके बिल्कुल बिंदास देख कर आइए, और वो टिकट भेजना मत भूलिएगा. ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी क्योंकि अच्छी बात है पार्टिसिपेट करना, अच्छी बात है ना. मेरी नेम से की आवाज में कमिंग अप नेक्स्ट गाना ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट
2: 6:29 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक पे रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर. वक्त हो चला है कि आपको ट्रैफिक का अपडेट बता दें. एंड्रिया होल्ड ऑन. ओके आई एम गोइंग टू प्ले अ सॉन्ग फॉर यू. ओके भाई इस वक्त जो है आपको मिलेगा हैवी ट्रैफिक ऑन टीपीई टुवर्ड्स एसएलई बिटवीन केपीई एंड पासरस ड्राइव 8. हैवी ट्रैफिक आपको मिलेगा ऑन पीआईई टुवर्ड्स अगर आप जा रहे हैं चांगी बिटवीन केपीई एंड थॉम्पसन रोड. और मिलेगा हैवी ट्रैफिक ऑन पीआईई टुवर्ड्स इटवास बिटवीन सीटीई सिटी एंड जलान यूनोस. ये था इस घंटे का ट्रैफिक का अपडेट. और यहाँ पर क्या है कि जैसे कि आज आते ही मैंने बताया था कि भाई कभी कभी ऐसे ऐसे दिन जाते हैं जब आप कितना भी कुछ भी कर लो एवरीथिंग इज गोइंग द अदर वे. आप जाना चाहते हो लेफ्ट वो जा रहा है कि नहीं भाई आज तो हम राइट ही जाके मानेंगे. आप करना चाहते हो रॉन्ग लेकिन चीजें कह रही है कि नहीं आज हम सिर्फ और सिर्फ रॉन्ग ही होंगे. ठीक है तुम्हारी एक नहीं चलेगी आज के दिन में. सो आई थिंक श्रेया हैज हैड अ रियली रियली लॉन्ग डे एंड शी इज लाइक मैं मेरे दिमाग में कोई गाना नहीं आ रहा है जस्ट बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ. कुछ एकदम ही खतरनाक ऑपोजिट कुछ मूड में प्ले कर दो गाना. एंड जब भी ऐसी चीजें आती है ना मुझे परफॉर्मेंस प्रेशर हो जाता है कि अच्छा क्या होगा अगर. तब मैं सोचती हूँ कि ठीक है जो होगा अच्छा ही होगा. ठीक है श्रेया आई एम गोइंग टू प्ले अ वेरी ढिंचैक गाना फॉर यू. जस्ट डांस योर फ्रस्ट्रेशन आउट. हाँ बस में हो तो डांस मत करना वरना अंकल डांटेंगे. गुड इवनिंग.

0: आपकी नॉलेज आपकी जीत।
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
0: They were not chosen. They were created.
2: Uski maa ka naam Janki tha. Hum ise Sita bulavenge.
3: Alpha.
0: The newest chapter in the YRF spy universe.
4: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
0: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट।
5: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है।
0: बॉर्न टू फाइट बिल्ट टू सर्वाइव। अल्फा रिलीजिंग 3rd जुलाई आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट।

0: आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला। मस्ती बॉयस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
1: चलिए चलिए थोड़ा सा फुटबॉल का अपडेट भी लिया जाए। 6:36 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराब के साथ। फीफा 2026 के बारे में बात नहीं किया तो कैसे चलेगा? सो ऑल द फुटबॉल फैंस, भाई फीफा वर्ल्ड कप हैज ऑफिशियली एंटर्ड इट्स मोस्ट एक्साइटिंग फेज बाय द राउंड ऑफ 16। एंड ट्रस्ट मी, अब हर मैच इज काइंड ऑफ डू एंड डाई, राइट? वन बैड डे एंड यू आर काइंड ऑफ पैकिंग योर बैग्स एंड टाटा बाय बाय। सम ह्यूज रिजल्ट्स हैव ऑलरेडी शेकन दिस टूर्नामेंट को। मोरक्को जो है उन्होंने नॉकआउट कर दिया है कनाडा को। फ्रांस एज्ड पास्ट पैराग्वे। नॉर्वे पुल्ड ऑफ दिस मैसिव अपसेट अगेंस्ट ब्राजील। एंड इंग्लैंड जो है उन्होंने सर्वाइव किया थ्रिलर टू बीट मेक्सिको 3-2 से। नाउ ऑल द आईज आर ऑन दिस ब्लॉकबस्टर clashes jo hai which are coming up, Portugal versus Spain, Cristiano Ronaldo jo hai versus young sensation Lamine Yamal, and USA versus Belgium. After that fir Argentina will take on Egypt, while Switzerland face karega Colombia ko to complete the round of 16 ka lineup. And talking about Cristiano Ronaldo, aapne suna hi hoga ye jo hamare 41 year old legend hai, he has confirmed ekdam taza ye aaj ki hi khabar hai that this will be his final FIFA World Cup. Now imagine that. Ek era that inspired millions is slowly reaching apna final chapter. But Ronaldo ne kaha that he's not thinking about retirement just yet. Right now he is, his only focus is helping Portugal to go as far as possible. Sawal ye hai ki कौन उठाएगा वर्ल्ड कप? क्या स्पेन अपनी विनिंग रन कंटिन्यू रखेगी? क्या पोर्टुगल रोनाल्डो को एक परफेक्ट फेयरवेल दे पाएगा? या फिर अर्जेंटीना, फ्रांस या कोई डार्क हॉर्स सबको सरप्राइज करेगा? यू टेल मी, विच टीम आर यू बैकिंग अप? किसको मिलेगा इस बार का फीफा वर्ल्ड कप 2026? व्हाट्स योर टेक, व्हाट्स योर कॉल? लेट्स हियर इट आउट 9151896 पर। यस, वो भी बताएं और अपनी चॉइस का गाना भी बताएं, क्योंकि यहाँ पे श्रेया जो है ना मुझको मजे ही आ गए कहती है एक और ऐसा गाना, तो मैंने कहा हम तो तैयार बैठे यहाँ पे, लेट्स गो।

0: हाँ, तुम ही डीजे, तुम ही हो। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले। बड़े बड़े हिट्स सुनो।
1: सोचिए, एक मूवी आती है, 3 साल के सेंसरशिप की लड़ाई के बाद फाइनली उसको रिलीज किया जाता है, एंड विद इन 24 आवर्स ऑफ इट्स रिलीज वो वापस से उस प्लेटफॉर्म से बैन कियर कर दी जाती है। बट वेल, जहां तक जिन जिन लोगों तक पहुंचना था वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि हर कोई हमारे जैसा थोड़ी ना होता है कि भाई लोग ना इतना फटाफट मूवीज डाउनलोड ऐसे करते हैं ऐसे। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराम के साथ, और यहाँ पर चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी choice. I'm talking about right now what everyone internet पे सब बात कर रहे हैं, दिलजीत दोसांझ की जो मूवी रिलीज हुई सतलुज। इसका नाम पहले पंजाब 95 रखा गया था, लेकिन फाइनली सतलुज नाम से इस टाइटल के साथ इसको रिलीज किया गया एक OTT प्लेटफॉर्म पर। बट और ये तब हुआ जब ये 3 साल की एक सेंसरशिप की लड़ाई ऑलरेडी ये लड़ रहे थे। फाइनली ये जब मोमेंट आया Within 24 hours of the release, it was said कि भाई ये जो है अब नहीं दिखा पाएंगे। अब जो कोई भी उस प्लेटफॉर्म पे जा रहा है तो उनको यही कहा कि हम यू नो ड्यू टू सम क्रिएटिव दिस दैट हम नहीं आपको दिखा पाएंगे, बट हम हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है, बहुत जल्द शायद इसको हम दिखा पाए वापस से। वी ऑल नो दैट वॉट दिस मीन्स, राइट? बट वेल, ये सारी चीजें होने के बाद दिलजीत पाजी जो हैं, जो आजकल बड़े मतलब बड़े जल्दी जल्दी लाइव जा रहे हैं, तो पहले वो लाइव जा रहे थे अपने डॉगी को लेकर और उसके साथ, उनके लाइव ऐसे होते हैं काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, बंदा काफी इंटरेस्टिंग है। वेल, जब सतलुज रिमूव हुआ तो भाई दिलजीत दोसांझ जो है वो आए लाइव में, और उन्होंने कहा कि भाई आई चैलेंज द डार्कनेस, मुझे तो पता था कि ये होने वाली है बैन यहां से, एंड उन्होंने एक्सपेक्ट भी कर रखा था। इवन बिफोर इट्स रिलीज ही प्रिडिक्टेड दैट दिस इज गोइंग टू हैपन। उन्होंने ये भी कहा दैट ये इस फिल्म सतलुज के लिए जो है इन्होंने कोई भी फीस चार्ज नहीं किया, एंड विच इज एक्चुअली ट्रू, डिस्क्राइबिंग इट एज अ प्रोजेक्ट ड्रिवन बाय कन्विक्शन रादर देन कमर्शियल गेन। दिस मूवी इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा, एंड इतने डिलेज और सेंसरशिप और हर्डल्स के बाद फाइनली डेब्यू करने के बाद भी जो है, मैंने कहा ना इतने जल्दी जल्दी लोग जो है उसको डाउनलोड करते हैं, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट इट एंड एवरीथिंग। या जो चीज को होना होता है ना, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से जो है वो रास्ता अपना बना ही लेता है आज के टाइम पे, मैं इतना किसी को भी लिख के दे सकती हूँ। वेल, चाहती तो मैं थी कि मैं दिलजीत पाजी का कोई गाना यहाँ पर बिल्कुल प्ले करूं, लेकिन आज है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, मतलब रिक्वेस्ट शो है ये, और यहाँ पर जो है अमित की रिक्वेस्ट आ चुकी है ऑलरेडी, एंड ही वांट टू लिसन टू इट राइट नाउ, सो ऑफ कोर्स हम कौन होते हैं बना करने वाले। शफकत अमानत अली के साथ सुनिधि चौहान की आवाज, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी आई हेट लव स्टोरीज ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: That's right, ये है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। पहुंच चुके हैं 7 बजे के उस पार ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। और यहाँ पर जो है हमारी शनाली बेबी डॉल जो है, उन्होंने मुझसे एक गाने की मांग की और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी किसी को ये सवाल पूछूंगी कि कौन सा वाला ये इसमें से सुनना है। इतने सारे ऑप्शन जो है आजकल हो चुके हैं। सो शी डिमांडेड फॉर कि यार मूड ऐसा है कि तम्मा तम्मा सुना दो। तो मैंने कहा कि देखो, एक तो ओरिजिनल वाला है, फिर धुरंधर वाला है, फिर बद्रीनाथ दुल्हनिया वाला है, पहले बता दो कि इनमें से कौन सा वाला तम्मा तुम्हारे तम्मे को सूट करेगा। सुनना है बेसिकली। she left it on me। इतने सारे सवाल पूछने वाले का यही जवाब होता है। तो मैंने कहा भाई धुरंधर की स्पीड से फिर हम चला देते हैं। आज तो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस है। आपने कहा, हमने यूं प्ले किया।

0: हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट सुनो
1: और मैं सोच ही रही थी और मुझे मौका मिल गया थैंक्स टू शनाली कि बिल्कुल बेस इतना स्ट्रांग बना दिया कि बात तो अब करनी पड़ेगी क्योंकि हमें गाना पड़ेगा हैप्पी बर्थडे टू यू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ यहाँ पे चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस भाई आज है हमारे रंगीला रणवीर सिंह का धुरंधर रणवीर सिंह का लेट अस कॉल हिम दैट टुडे हैप्पी वाला बर्थडे है उनका एंड भाई ऐसा इसने तूफान ऐसा धुरंधर बनके ये बंदा अभी भी छाया हुआ है लाइक एवरी सिंगल प्लेस इट्स आफ्टर अ रियली गुड लॉन्ग टाइम दैट व्हेन आई गो आउट एंड टॉक अबाउट मूवीज टू पीपल दे आर टॉकिंग अबाउट धुरंधर दे आर स्टिल टॉकिंग अबाउट धुरंधर दैट्स द काइंड ऑफ इम्पैक्ट धुरंधर हैज एक्चुअली लेफ्ट ऑन पीपल विच इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग आई थिंक मुझे तो हमेशा से ही रणवीर सिंह काफी पसंद था बिकॉज ए ही इज लाइक सो एनर्जेटिक आई लव हिज एनर्जी ओके ही इज दैट लाइक एक होता है ना कि हाथ से बाहर निकला हुआ जो बच्चा होता है कि उसको संभालना पड़ता है कि यहाँ मत जाओ बेटा वहां मत जाओ बट ही इज unapologetically himself the way he dresses up he owns it up jahan pe jata hai spotlight usko automatically follow karti hai and he is like that and he accepts that as it is I love that about him baat kare unke filmography ki aur unki jo journey rahi hai kahan wo unka jab debut hone wala tha band baja barat ke sath right and karan johar to outright rejected him ki aadhi ye bada matlab ye kaun sa ladka hai jisko tum bol rahe the kisko launch karne wale ho and every and he was like ये इस शक्ल के साथ हीरो बनेगा लाइक दिस इज व्हाट ही हैड गिवन फ्रॉम देयर कट टू अभी दुआ के पापा अभी एक और बेबी के पापा जो बनने वाले हैं प्लस हैविंग दीपिका पादुकोण अलोंगसाइड एज द बेस्ट पार्टनर इन द वर्ल्ड आई मीन सही है यार ये बंदा एंड आई रियली रियली विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अभी अपकमिंग इनकी एक प्रलय करके मूवी जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बॉम्बी ये जॉम्बी इन मूवी जो फर्स्ट टाइम इंडिया में इस तरह का कुछ प्रोडक्शन हो रहा है या लेट्स सी व्हाट हैपेंस वी आर काइंड ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बट हैप्पी बर्थडे उतनी ही एनर्जी के साथ जितनी एनर्जी वो अपने आसपास के लोगों को हमेशा बांटते रहते हैं विद अ स्माइल ऑन हिज फेस देयर इज दिस वीडियो व्हिच इज गोइंग वायरल राइट नाउ बंदे ने ऊपर से नीचे तक सफेद रंग के कपड़े पहन रखे हैं सफेद जूते भी पहन रखे हैं सैटिन की उनकी ट्राउजर है और उसके नीचे बंदे ने हील्स ही इज वेयरिंग व्हाइट कलर के हील्स भाई माचो भी ये और हील्स भी ये कमाल है यार बंदा ये कमाल लाइक सीरियसली रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर विच वन इज योर फेवरेट रणवीर सिंह जो है आउटफिट हाँ ढूंढ के निकालना मुझे भेज देना

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वाल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: Singapore, prepare for impact.
4: 3, 2, 1.
5: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Lion Challenge. City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
6: बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
7: ललिता भोपाल से ट्यून इन करके मुझसे ऐसा सवाल कर रही है, वो भी मुझसे ऐसा सवाल कर रही है जिसका जवाब मेरे पास आज तक, मैं भी फिगर आउट ही कर रही हूँ, ठीक है। उसके दो बच्चे जो छोटे छोटे हैं हमारे, वो फिगर आउट कर रहे हैं, मैं भी फिगर आउट कर रही हूँ। रेडियो बस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। कह रही है कि भाई ये जो तुम गाने प्ले कर रही हो तो ये बराबर गाने गा रहे हैं, एक एक वर्ड यहाँ पे याद हो रखे हैं। हाँ, ये कैसे याद हो जाता है? सब्जेक्ट में पढ़ाई में तो एक चीज याद होता मतलब टेल मी, यू ऑल टेल मी, आप में से कितने, आई एम श्योर दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको ना याद करने की एबिलिटी उनकी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। एंड आई कंप्लीटली, आई रियली एनवी यू, बिकॉज कई बार ऐसा होता था, मैं भी यही सोचती थी कि अगर हर कोई, मतलब गाने के फॉर्म में अगर हमें कोई सब्जेक्ट पढ़ा देता है, स्पेशली द वंस जो मुझसे याद नहीं होते थे, तो कितना अच्छा होता, जल्दी से याद हो जाता। देखो पहाड़े भी हमने याद जो किए हुए हैं ना, जब हमने ऐसे याद किया था, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, हम आज भी कभी ऐसे किसी को टू वन जा टू टू जा क्या होता है, ये ज क्या होता है, ये सारी चीजें आज तक हम लोग करते हुए आ रहे हैं. सो या चाहे वो 10 साल के हो या फिर कितने भी बड़े हो जाए, आई थिंक वी आर काइंड ऑफ स्टिल फिगरिंग इट आउट. ला लेता तो इस बात का जवाब मेरे पास तो नहीं ही है, ठीक है. बट वेल, एक बात का जवाब मेरे पास बिल्कुल है, वो है हेल्दी स्नैकिंग का तरीका. आजकल हेल्दी कुछ भी पूछ लो मुझसे, आपको तो पता ही है कि मैं आजकल कितना वर्कआउट कर रही हूँ, कितना पसीना बहा रही हूँ. अ लॉट ऑफ पीपल नो, राइट. सो वेल, हेल्दी स्नैकिंग के चक्कर में जो एक नया चेंज जो मैं अपने किचन में लाई हूँ, दैट इज कि पहले क्या थे कि ये जो नट्स वगैरह थे वो मैं मतलब कबर्ड में ऊपर जो है शीशियों में रखे रहते थे, अब मैंने उसका

चेंज करके मेरे किचन के स्लैब में बिल्कुल आंखों के सामने वहां पे रख दिया है। क्या होता है कि जब भी आपको भूख लगती है तो यू नो कि हाँ सामने फ्रिज खोला, खड़े हो गए, फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर आपके हाथ ऑटोमेटिकली गलत चीजों की तरफ बढ़ जाते हैं। तो मैंने कहा कि वही चीजें सामने रखो जिसके पास हाथ पड़ो। एंड इसमें आई थिंक आई शुड थैंक हमारा जीजी मार, बिकॉज उन्होंने मेरी आदत जो है वो काफी अच्छी कर दी है। मैंने उनके यहाँ से मंगाए काफी सारे नट्स, ओके, चाहे वो मैकेडेमिया नट्स हो, पम्पकिन सीड्स हो, इनके कैश्यूज हैं एंड आमंड्स है, रेजन्स हैं, मखाने हैं, तो मैंने वहां से मंगा के सारे डब्बों में सजाकर सामने रख दिया है। जब भी ऐसा स्नैकिंग का इच्छा हो जाती है ना, तो उधर से जाकर हाथ वही पहुंचता है, पेट में भी वही फिर पहुंचता है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। इफ यू हैव नॉट ट्राइड देयर ब्रांड कृषिवल, इट इज रियली रियली गुड, यू शुड गो टू gigimartonline.com.sg और वहां जाकर बिल्कुल इसको ऑर्डर कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, दे हैव अमेजिंग अदर स्टफ एज वेल, लाइक जामुन ट्राइंगल, दे हैव गुलकंद एंड ऑल दीज थिंग्स जो कि आप अपने घर में इस तरह से रख सकते हैं। अभी इतने जामुन ट्राइंगल छोटे से हैं, ठीक है, जब भी बहुत ज्यादा आपको क्रेविंग हुई आपने जस्ट कर दिया 135 ग्राम का, चार लाइक एक डब्बा आता है $4 का, दैट्स इट। एक बार ट्राई करके देख लो मेरी बात सुन के, एंड देन यू विल थैंक मी लेटर। मैं गलत बात तो करती ही नहीं हूँ, है ना। Radio 3947 live पर ये तो थी ये वाली बात, अब है गाने वाली बात। आने वाले हैं जुबिन नौटियाल, ध्वनि भानुशाली, कमिंग अप मर जावा के साउंडट्रैक से इज दिस वन। गुड इवनिंग।

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: 7:30 बज चुके हैं, स्टूडियो क्लॉक में रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ, और यहाँ पर चल रहा है क्या मस्ती वॉइस, आपकी चॉइस, लेकिन फिलहाल आपकी चॉइस होनी चाहिए ट्रैफिक का अपडेट, क्योंकि दैट्स व्हाट माय चॉइस सेज राइट नाउ। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन सीटीई टुवर्ड्स एसएलई आफ्टर मोलमन रोड, हेवी ट्रैफिक आपको मिलेगा ऑन एवाई टुवर्ड्स ट्वास एट क्लेमेंटी एवेन्यू 6 एग्जिट, और मिलेगा व्हीकल ब्रेकडाउन ऑन ईसीपी टुवर्ड्स सिटी बिफोर पीआईई। सो वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। बाकी अल्फा की टिकट्स का अपडेट, हाँ वो मैं वापस आकर देती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड।

0: आपकी नॉलेज आपकी जीत।
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
0: They were not chosen. They were created.
2: माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
3: अल्फा,
0: द न्यूएस्ट चैप्टर इन द YRF स्पाई यूनिवर्स।
4: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
0: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल, वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट।
5: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है।
0: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.
6: आपके हिट्स, आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
7: That's right, all thanks to Home Screen Entertainment ki wo ye amazing se movie already island wide release kar chuke hain, and thanks to us ki ye mauka aapko yahan par mil raha hai, because of course jo सुनते हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव वो खास ही होते हैं, हमेशा उनको ये प्रिविलेज जरूर जरूर मिलता है। सो वेल, आओ बताती हूँ कि क्या कर सकते हो आप, क्या क्या कर सकते हो आप। वेल भाई, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर छोड़ रहे मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, और इस हफ्ते आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आप जाकर देख कर आओ अल्फा मूवी। वाई, आई विल टेल यू वाई। क्योंकि एक तो जो हमने सवाल आपके लिए वहां पे पोस्ट किया हुआ है हमारे सोशल मीडिया पेज पर, दैट हु इज दैट वन अल्फा वुमन इन योर लाइफ, जो है नॉट इन योर लाइफ ऑल्सो, जरूरी नहीं है, ठीक है, आपने कहीं किसी को देखा हुआ हो, वो आपकी दोस्त भी हो सकती है, क्योंकि दूर की कोई रिश्तेदार भी हो सकती है, कोई भी, बट देन दैट पर्सन, जब आप जब आपने उनको देखा हुआ है, यू हैव फेल्ट लाइक, यू हैव सेड लाइक, भाई अल्फा इसको कहते हैं, that is how it is supposed to be done. Maybe she has stood up for someone, maybe she has been awarded with, like, you know, koi bravery award mila ho ya kuch is tarah ki cheez hui ho, to phir aap bilkul unko nominate kar sakte hain for the Alpha Woman contest. But usi ke sath sath, because you know the movie in itself tells you a lot about that, why are we asking you ki look around you ki kaun hai wo Alpha Woman. This is the first YRF spy universe ka first female led spy thriller, and along with them, like Alia and Sharvari, there's Bobby Deol, there's Anil Kapoor, and there's a lot, there's Hrithik Roshan as well, like chota sa cameo hai but hai, oh, and he is good, okay, unki aankhe dekhkar trailer mein hum log samajh gaye the ki kuch to hoga, acha sa hi hoga jo bhi hoga. But coming back to this one, we are saying ki is hafte agar aap jaakar dekhkar aate ho Alpha, theek hai, आप गए, आपने टिकट लिया, और वो टिकट फेंक नहीं देना है, ठीक है, टिकट संभाल के रख देना है, अगर डिजिटल रिसीट है डिजिटल रिसीट संभाल के रख लेनी है, क्योंकि वो होगा आपका एविडेंस, स्पाई का प्रूफ। बट वेल, आपने क्या करना है कि फटाफट से जाके मूवी देखनी है, और या हमको भेज देना है अपना टिकट, ठीक है, फर्स्ट इन जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से तय किया जाएगा, जो टिकट्स हमारे पास होंगी हम आपके लिए वो रीइंबर्स कर देंगे। एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट टिकट, पॉइंट टू बी नोटेड, में लॉर्ड ऐसा नहीं है कि आप पूरे फैमिली के साथ जाए और सबकी टिकट्स हमें भेज दें, ना जी ना, हम एक टिकट की बात कर रहे हैं। तो आप अगर जाकर देखते हैं तो आप अपनी अपनी अकेले की टिकट जो है वो हमें भेज दें, है ना, बाकी तो समझ डाउट तो आप वैसे भी काफी हो। सो होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट को थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग, ऑलवेज ब्रिंगिंग सच अमेजिंग मूवीज जो है, एंड रिलीजिंग इट इन सिंगापुर आइलैंड वाइड, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे है, डू यू वांट अ पार्टनर, नहीं नहीं, यू माय लव ऑलवेज ऑलवेज, पार्टनर के साउंड ट्रैक से कमिंग अप नेक्स्ट इज दिस वन।

0: हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट्स सुनो
1: हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ये तो हमने सबसे पहले ही समझ लिया था जब इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ था तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी का एक बिग ब्रेक थ्रू जरूर हुआ बट उसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें भी उसमें ऐड होती गई कट टू 2026 व्हेन द होल ग्लोब अक्रॉस द ग्लोब एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट AI और वो भी इतना ज्यादा दैट आज की डेट में कुछ भी नहीं समझ में आता कि क्या रियल है क्या फेक है लाइक इट इज दैट काइंड ऑफ इनसेन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूं के साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस एंड नॉर्वे जो है उन्होंने अपनी चॉइस यहाँ पर बताई है नॉर्वे जो है उन्होंने इंप्लीमेंट किया है अ नियर टोटल बैन ऑन जनरेटिव AI एलिमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए एंड दे आर इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट लिमिट्स फॉर ओल्डर चिल्ड्रन एज वेल काइंड ऑफ एमिंग टू सेफगार्ड फाउंडेशनल लर्निंग नाउ ये जो मूव है फॉलोज अ स्मार्टफोन बैन एंड डिक्लाइनिंग टेस्ट स्कोर्स जो उनको नजर आए उसको मद्देनजर रखते हुए ये एक कॉल लिया गया लाइक you know like all the nations are now thinking about this ki bahut hi zyada haath se bahar nikalti ja rahi hai cheeze aur maatein and youth ko thoda sa jo hai sahi usme rakhne ke liye aur unko protect karne ke liye ye sari cheeze kafi zaruri bhi hai now younger students like age between 6 to 13 will largely apparently avoid Norway mein to avoid AI while jo older students hai 14 or 19 years ke beech mein they will have supervised या सिर्फ एजुकेशनल यूज के लिए उसको किया जाएगा द नेशन नॉर्वे इज ऑल्सो री इंट्रोड्यूसिंग फिजिकल बुक्स रिवर्सिंग इट्स अर्लियर एम्ब्रेस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड अ लॉट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस एज वेल जो है वो यही इसी चीज पे जो है वापस जा रही है द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक विच आई थिंक इट्स काइंड ऑफ नॉट देयर आज की डेट में आपने कितने जो है बच्चों को देखा होगा दे आर विद अ बुक इंस्टेड ऑफ देयर फोन्स एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कितना भी हम लोग कितने भी शरारती बच्चे थे दैट हैबिट ऑफ आर रीडिंग की लाइब्रेरी जाएंगे एक बुक लेकर आएंगे उसको पढ़ेंगे वापस देंगे जिस तरह भी हमारा इंटरेस्ट हो वो उस तरह की बुक्स जो है हमें पढ़ने में जो इंटरेस्ट और मजा आता था आई थिंक नाउ धीरे धीरे वो चीज और वो रियलाइजेशन जो है वो वापस आती हुई जा रही है पीपल वॉन्ट पेरेंट्स वॉन्ट दैट टू हैपन नाउ है ना इट्स अ गुड स्टेप दो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर रिंगिंग यू ऑल द अपडेट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब इज मी आंट्रा मस्ती वॉइस आपकी चॉइस में फिलहाल मोहित चौहान है मेरी चॉइस एंड सपना आंटी बिल्कुल नहीं भूली हूँ जाते जाते आपका गाना प्ले करते हुए जाऊंगी

हाँ जी, एज यूजुअल फटाफट से बीच में हाक खाने को बीच में रोकना पड़ा, बिकॉज एक रिक्वेस्ट यहाँ पर रह गई है। मैं जाते जाते जो है खूबसूरत गाने के साथ इसको एंड करना चाहती थी शो को, इसीलिए मैंने आखिरी तक थोड़ा सा थाम के रखा सपना। आंटी, आपकी रिक्वेस्ट छोड़ के जा रही हूँ, फटाफट से जा रही हूँ, सो दैट यू कैन एंजॉय एज मच एज योर सॉन्ग राइट हियर राइट नाउ, क्योंकि ये है मस्ती बॉयज आपकी चॉइस। बाकी आपसे मुलाकात होगी कल सुबह मस्ती का मंत्रा करेंगे एंट्रा के साथ, 7 बजे बिल्कुल ट्यून इन कर लेना, उससे पहले भी कर लेना, थोड़ी भक्ति वक्ति करो भाई, उसके बाद फिर हम अपनी बातें करेंगे। नहीं ठीक है, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेजेंड्स की इस खास सीरीज में लेजेंड्स द अचीवर्स। और इन दिनों हम लेजेंड्स में उन शख्सियतों का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने जीने के सलीके सिखाए हमें, जिनकी ऊर्जा से आज तक हम ऊर्जा ले रहे हैं, जिनका नाम आज एक पहचान है और जिनका काम आज हमारे लिए किसी विरासत से कम नहीं है, जिसे सहेजना है तो आगे भी बढ़ाना है। वेल, मेरा नाम है समर, यही मिलता हूँ आपसे यह रेडियो 24/7 लाइव। और मैं घर पर जब भी रईसगिरी दिखाता हूँ ना, तो मेरी माँ बोलती है, ज्यादा टाटा बिड़ला हो गया है क्या? गोया ये नाम ना हो बल्कि रईसियत के सिंबल हो, और ये पहचान उन्होंने खुद ही अचीव भी की है। तभी तो आज लेजेंड्स की अचीवर सीरीज में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ इन दोनों में से एक को। किससे मिलवाऊं? ऐसा करते हैं, वैसे टाटा से तो मैं आपको मिलवा चुका हूं, इंडिया के राजस्थान आपको लिए चलता हूं। आप सोचेंगे राजस्थान क्यों भाई? दरअसल मैं भी राजस्थान से ही हूं और राजस्थान तो है ही कमाल, क्योंकि यहां पर माटी बांधे पैंजनी, पगड़ी पहने बादली, डेढ़ो डेढ़ो बावड़ो, घोड़ मतोड़ बावड़ी। और उस धरती से अगर ऐसी कोई शख्सियत निकली हो तो उससे मिलवाना तो जरूरी हो जाता है। सो आज मैं आपको टाटा बिड़ला में से बिड़ला से मिलवाऊंगा। शुरू करते हैं शो। खमागनी राम राम सा, भली पधारो सा, राजस्थान में आप थोड़ा सा राजस्थानी ठाट बाट का मत

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

0: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: कहानियां उनकी जिनके होने से हम हैं. सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर.
3: हाँ जी, वेलकम बैक. आप सभी का लेजेंड्स में स्वागत. मूड गाड़ी पर सवार होकर हम पहुंच गए राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के पिलानी में, जहां एक मारवाड़ी परिवार में हमारे आज के लेजेंड का जन्म हुआ. तारीख थी 10 अप्रैल 1894. आज हम बात करेंगे राजस्थान के बिड़ला परिवार की, जहां हमारे आज के लेजेंड ने जन्म लिया. वो है घनश्याम दास बिड़ला, जिन्हें लोग जीडी बाबू कहकर बुलाया करते थे. हम भी उन्हें वही बुलाएंगे. वेल, मारवाड़ी लोगों के बारे में मैं पहले आपको बता दूं कि मारवाड़ शब्द मारू और वाड़ा के मिलन से बना है. हालांकि मारवाड़ का मतलब है मौत की जमीन, लेकिन बिजनेस की जमीन कह सकते हैं आप, यहाँ जहाँ से व्यापारी पैदा होते हैं. हालांकि ये इलाका जहाँ जीडी बाबू पैदा हुए वो शेखावाटी इलाका कहलाता है, लेकिन इसे भी मारवाड़ में शामिल किया जाता है. वेल, एक बात कही जाती है कि मारवाड़ी सफल व्यापारी होते हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन. इस पर कई रिसर्च भी की गई है. थॉमस टिम्बर्ग नाम के आदमी ने तो मारवाड़ियों पर डॉक्टरी की है, पीएचडी की है. उनकी सफलता के कई कारण बताए जाते हैं, जैसे मजबूत पारिवारिक संगठन, जोखिम लेने की हिम्मत, पैसे की समझ. दरअसल राजस्थान के लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत कम है, सीमित है, बहुत ही लिमिटेड है. तो उनके भीतर एक बड़ी नेचुरल सी आदत होती है सहेजने की. अब पानी को ले लीजिए. राजस्थान में बारिश कम होने की वजह से यहाँ के लोग पानी को इकट्ठा करने के तरीके ढूंढते हैं. बस ऐसे ही पैसा भी उन्होंने इकट्ठा करना और सहेजना सीख लिया, और उसका सही वक्त पर सही जगह इस्तेमाल करना भी सीख लिया, जिसे मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि हमें ये समझना ज्यादा जरूरी है. लेकिन इससे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं. ब्रेक के उस पार हम और आप थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, फिर अपनी कहानी पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वैसे भी किसी भी कहानी का सिरा ढूंढने के लिए बहुत पीछे जाना पड़ता है, तो हमें भी जाना होगा इसके लिए एक ब्रेक.

0: सांपे रुक गया, आगे बढ़।
1: रे
0: रे के आगे क्या है? अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वा, क्या गले में तासीर है।
1: ये बात है
0: तो मां, चल वापस आजा फिर से अपनी जगह पे।

0: सारे गा मा वन टू थ्री फोर
1: सारे गा मा सारे गा का सारे मा मांगा रे सा सारे गा मा सारे गा का सारे मा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा।
2: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: नमस्कार नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं आपको कहानी में बहुत पीछे ले जाना चाहता हूँ। ऐसा करते हैं, हम चलते हैं 18th century में, जब से मुगल साम्राज्य का पतन होना देश में शुरू हुआ। तभी से मारवाड़ियों ने अपने जमा किए गए पैसों को लोगों को ब्याज पर देना शुरू कर दिया था। यानी एक तरह का बैंक हुआ करते थे वो लोग, मारवाड़ी लोग, लोकल बैंक, जो गांव के लोगों को जरूरत के समय इंटरेस्ट पर पैसे दिया करते थे। जीडी बाबू का जन्म ऐसे ही मारवाड़ी परिवार में हुआ, जहां पर इन लोगों का यही पेशा था। लेकिन इनके दादाजी शिव नारायण बिड़ला ने इस पेशे से हटकर अलग क्षेत्रों में व्यापार का विकास किया था। दरअसल ब्रिटिश रूल के टाइम पर 19th सेंचुरी में मारवाड़ियों का आउट माइग्रेशन शुरू हुआ। दिल्ली होते होते गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में ये जाने लगे। रेलवे के आने के बाद कोलकाता और फिर बांग्लादेश जाकर शुरू किया, ब्रह्मपुत्र के किनारे किनारे या आसाम पहुंच गए और फिर वहां से बर्मा, बे ऑफ बंगाल के रास्ते ईस्ट से नीचे आए और फिर सेंट्रल और उसके बाद विदर्भ और मराठा में, यानी महाराष्ट्र, यानी बॉम्बे, यानी पैन इंडिया मारवाड़ी। इन लोगों के बीच पैसे का लेन देन हुंडी सिस्टम से होता था। बिजनेस करने दूर दूर जाना होता था तो कैश नहीं ले जाना पड़ता था। इसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा था कि इस हुंडी सिस्टम से शुरू हुआ मल्टी ब्रांच मारवाड़ी ट्रेडिंग फर्म्स का। इनमें से एक थी ताराचंद घनश्याम दास, जिसके 1870 में कलकत्ता, बॉम्बे, अमृतसर, पंजाब आदि जगहों पर ब्रांचेस थी। इस फर्म ने लुभाया और मारवाड़ी व्यवसायियों को, और जीडी बाबू के दादाजी शिव नारायण जी इस फर्म के साथ काम करने लग गए और लोगों को सूद पर पैसा देने लगे, बड़े लेवल पर, बॉम्बे जाकर। जब जीडी बाबू के फादर बड़े हुए तो वो भी अपने पिता को असिस्ट करने लगे। उनका नाम था बलदेव दास। उन्होंने अपने भाई के बेटे के साथ मिलकर अफीम का व्यवसाय शुरू किया और इसमें उनको काफी फायदा हुआ। इसके बाद वो कलकत्ता चले गए और इन्हीं के यहाँ जन्मे जीडी बाबू। आगे की कहानी एक ब्रेक के बाद। आई होप आप अब तक किस्सा तमाम जान चुके हैं, मतलब

0: आपकी नॉलेज आपकी जीत।
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा kg मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी,
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
2: क्या जी?
3: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
2: वाजी, क्या बात जी।
3: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। वेलकम बैक लेजेंड्स में, आज आप सुन रहे हैं घनश्याम दास बिड़ला की कहानी समर की जुबानी। जीडी बाबू बचपन से ही बड़े खेलकूद के शौकीन रहे और उनको एक बहुत बड़ा और गहरा शौक था पहलवानी का, और इसकी भी उन्होंने शिक्षा ली एक गुरु बनाया जिनसे उन्होंने पहलवानी के गुर सीखे। इसके अलावा उनको शौक था किताबें पढ़ने का, उन्होंने बचपन में बहुत सारी किताबें पढ़ ली थी, उनमें पढ़ने को लेकर बहुत ललक थी। मगर व्यवसायियों की फैमिली में लड़के को बिजनेस में लगा दिया जाता था। उनके दादाजी को भी डर लगा कि अगर ये कहीं पढ़ाई लिखाई में लग गया तो बिजनेस कौन संभालेगा। उधर 10 साल की उम्र में वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने लग गए थे, बड़े हुए तो लिटरेचर पढ़ने लगे, बांग्ला साहित्य पढ़ा, गुजराती भी बढ़िया से बोलने लगे। वेल, दादाजी को उनकी अंग्रेजी देखकर डर लगा। उनको किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन उन्होंने कराया नहीं, ये सोचकर कि कहीं ये अंग्रेज न बन जाए। कोई बदलाव मंजूर नहीं था उन्हें। ऐसा ही कुछ जीडी बाबू ने भी आगे चलकर कहा एक इंटरव्यू में, जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत बदलेगा कभी, उन्होंने कहा हमारे कपड़े बदल सकते हैं, हमारे घर बदल सकते हैं, स्कूल बदल सकते हैं, मगर हम वही रहेंगे, हमेशा भारतीय। मुझे लगता है हम पहली सदी और 20वीं सदी का मिक्सचर है। इसलिए फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे कि जीडी बाबू आगे पढ़ना चाहते थे मगर उनके घर वालों ने उन्हें पढ़ने नहीं दिया, तो फिर उन्होंने क्या किया।

0: और ग्रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
5: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। एक बार फिर से कर रहा हूँ मैं आपका स्वागत दोनों बाहें फैलाकर। लेजेंड्स द अचीवर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं जीडी बाबू की, यानी घनश्याम दास बिड़ला जी की। हम उनकी कहानी में थे जहाँ जीडी बाबू पढ़ना चाहते थे मगर घर वाले समझे नहीं, छोटे से किसी स्कूल में उनका एडमिशन करवा दिया। लिहाजा जीडी बाबू कोलकाता आने जाने लगे स्कूल के लिए। वहाँ जाते तो बांग्ला लिटरेचर पढ़ने लगे वो। दादाजी को फिर टेंशन हुई तो उन्होंने खानदानी अकाउंटेंसी सीखने को कहा। ये एक अलग ही टाइप की अकाउंटेंसी होती है, इसे पाथा सिस्टम के रूप में जाना जाता है। ये एक बड़ा ही अनूठा सिस्टम है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ज्यादा इकोनॉमिक्स तो मुझे नहीं आती है, पर मारवाड़ी लोग हर दिन का अपना हिसाब तय करके रखते थे और आज भी रखते हैं। कॉस्ट एस्टिमेशन रखते हैं, कितना माल लगेगा, कितने में बिकेगा और कितना प्रॉफिट होगा। और अगर उस दिन ऐसा नहीं होता तो ट्रबल शूटर भेजा जाता है ये चेक करने के लिए कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है आखिर, और वो रिपोर्ट करता है, फीडबैक देता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। यानी बात पर नहीं छोड़ते, हर दिन का एवेल्युएशन हर दिन होता है। तो वेल इसी प्रोसेस को स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल ने भी अपनाया है, ये फुल प्रूफ प्लान है। अच्छा, इस बीच दादाजी ने सोचा एक और प्लान, क्यों ना जीडी बाबू को व्यस्त कर दिया जाए। उन्होंने एक अल्टीमेट प्लान बनाया और वो था उनकी शादी कराने का। और उनकी शादी करा दी गई। उनके पिलानी कस्बे के पास ही के गांव चिड़ावा की रहने वाली थी उनकी पत्नी और नाम था उनका दुर्गा देवी। दुर्गा देवी ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाई और बहुत जल्द यानी शादी के 4 या 5 साल के भीतर ही वो गुजर गई। एक बेटे की माँ थी वो, जिनका नाम लक्ष्मी निवास मित्तल था। आगे क्या हुआ इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे, मगर एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे।

0: मन्नू लेट्स गो।
1: चलो सब चले गए, प्रश्न ही उठता, मैं तो सो ही जाता।
0: अरे बाहर निकलो।
1: ये आप मुझे कहाँ ले आए?
0: ये आप बंद करो।
1: सॉरी
0: टोकरी संभालो। जगह कैसी?
1: बड़ी प्यारी जगह। मगर आपने तो कहा था कि तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है, यहाँ तो कुछ गाड़ी वाली भी नहीं दिखाई देती, मैं मरम्मत किसकी करूँगा?
0: अरे गाड़ी की मरम्मत किसी और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता।
1: और भला क्या काम हो सकता है?
0: और बहुत से काम हो सकते हैं।
1: जैसे?
0: कर सकोगे?
1: मैं हर काम कर सकता हूँ।
0: सोच लो।
1: सोच लिया।
0: और अगर ना कर सकी तो?
1: हार मान जाऊंगा।
0: ऐसे नहीं, कोई शर्त होनी चाहिए।
1: क्या?
0: हाँ अगर तुम हार गए तो ये टोकरी उठाकर सारा दिन साथ घूमना पड़ेगा।
1: टोकरी?
0: मंजूर।
1: मंजूर, काम तो बताइए।
0: जरा सोच तो लू। वो देखते हो वो?
1: हाँ।
0: क्या?
1: मुर्गी।
0: हाँ पकड़ लाओ।
1: मुर्गी?
0: हाँ।
1: ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी पकड़ता हूँ। ये लीजिए।

0: They were not chosen. They were created.
1: उसकी माँ का नाम जानकी था. हम इसे सीता बुलाएंगे.
2: Alpha.
0: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
3: पर इस बार सीता आज लंका खुद चलाने आई.
0: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडिया फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट.
2: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है.
0: बॉर्न टू फाइट बिल्ट टू सर्वाइव. अल्फा रिलीजिंग 3rd जुलाई आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू. ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट. आपकी नॉलेज आपकी जीत.
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: हाँ जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर लेजेंड्स द अचीवर सीरीज और मैं आज आपको सुना रहा हूँ हमारे आज के अचीवर घनश्याम दास बिड़ला की कहानी। जी हाँ, जीडी बिड़ला की कहानी। कहानी के उस मोड़ पर थे हम जहाँ दादाजी सोचते थे कि जीडी बिड़ला की शादी कर देने से वो ठीक हो जाएंगे, किताबों के बजाय अकाउंटेंसी में दिमाग खपाएंगे। मगर उनकी वाइफ की डेथ हो गई। बड़े शहर जाकर व्यापार सीखने की मारवाड़ियों की रवायत को घनश्याम दास भी निभाते हुए पिलानी से लखनऊ चले आए और यहाँ वो एक हॉस्टल में रहने लगे। उस हॉस्टल में ऑलरेडी कई मारवाड़ी बच्चे रहते थे। सब एक दूसरे से अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे और सीखते थे और आखिरकार बिजनेसमैन के बेटे और पोते थे तो जींस में मौजूद बिजनेस बाहर आ ही गया। और सिर्फ 16 साल उनकी उम्र थी, वहां तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने अपनी ट्रेडिंग फर्म खोल ली और पटसन यानी जूट की दलाली में लग गए। इसमें उनका साथ उनके फादर इन लॉ ने दिया। ये उन दिनों की बात है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। कॉटन और जूट की बहुत डिमांड थी और इसका फायदा उनके नए नए बिजनेस को मिला और खूब मुनाफा कमाया उन्होंने। इधर अंग्रेज व्यापारी बिड़ला से नफरत करते थे क्योंकि उन्होंने जूट के बिजनेस पर एक तरफा कब्जा कर लिया था और वो यूरोप के कारखानों को ऊंचे दामों पर पटसन बेचते थे। इधर अंग्रेजों ने इससे बचने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए, मनी रेगुलेशन को पूरा अपने बस में कर लिया यानी पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। तब जीडी बाबू ने अपना स्वर बुलंद किया और उन्होंने हिंदुस्तान के सोने और स्टर्लिंग की लूट का नारा दिया, पूरे देश में विद्रोह कर दिया उन्होंने। कई बार अंग्रेजों ने सोचा कि इनके बिजनेस को बंद कर दें, मगर वो नाकाम रहे क्योंकि वो कहते ना, हौसले फतह बुनियाद हुआ करते हैं, कांपते हाथों से तलवार उठाया नहीं करते। और कुछ ऐसा ही किया जीडी बाबू ने भी। उनके हौसले वाकई में बहुत बुलंद थे, वो डरे नहीं और काम जारी रखा। मैं भी दास्तान जारी रखूंगा लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है ना, तो कहानी के अगले मोड़ पर हम मिलेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा।
4: हाँ जी जी।
3: 1/2 kg मसूर दाल।
4: जी जी।
3: काजू, किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं।
4: जी जी।
3: Are you even listening? या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, why to fear when GG Mart is there?
3: क्या जी?
4: जी जी, GG Mart, your personal grocer. Just log on to ggmartonline.com. ग्रोसरी एड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
3: वाजी, क्या बात जी।
4: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप है मेरे यानी समर के साथ। और आज मैं आपको सुना रहा हूँ इंडिया के एक बहुत बड़े उद्योगपति व्यवसायी घनश्याम दास बिड़ला की जिंदगी के सफर की कहानी। जूट के बिजनेस में पूरी तरह से जुटे जीडी बाबू ने अपनी लड़ाई जारी रखी। उस समय उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनका हथियार उनका साहस था। हौसले से लबरेज जीडी बाबू ने मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखने की ठानी और 1919 में कोलकाता में बिड़ला ब्रदर्स के नाम से पहली जूट मिल स्टैब्लिश कर दी। और इस बीच जब वो अंग्रेजों से एक तरह की लड़ाई लड़ रहे थे, एक और शख्स था देश में जो एक अलग ही लड़ाई लड़ रहा था, और वो थे मोहनदास करमचंद गांधी यानी हमारे बापू। 1916 में दोनों मिले। बापू की आइडियोलॉजी से जीडी बाबू बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। उन्होंने ये भी कहा कि गांधी जी से ये मेरी मुलाकात प्लान नहीं थी, मैं बारी बारी से उन सब लोगों से मिलना चाहता था जो इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए संघर्ष कर रहे थे, और इसीलिए जीडी बाबू खुद गांधी जी से मिलने चले गए। गांधी जी तब हिंदुस्तान लौटे ही थे साउथ अफ्रीका से, और इसके बाद वो देश भर का दौरा कर अपनी यात्रा से लौटे थे। पूरे देश में उनको लेकर उत्साह था, खासकर नौजवानों में। जीडी बाबू भी बहुत छोटे थे। स्वागत करने के लिए गांधी जी का, स्वागत करने की तैयारी जैसे जिम्मेदार युवाओं को सौंप दी जाती है ना, बस वैसे ही उन्हें भी सौंप दी गई। तो स्वागत की तैयारी में लग गए जीडी बाबू। इसके बाद क्या हुआ, मैं यहाँ पर आपको एक ब्रेक पर ले चलूंगा और ब्रेक के बाद बताऊंगा कि इसके बाद हुआ क्या। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और कहानी सुनाने वाला भी इंटरेस्टिंग है। कभी आकर मिलिए तो सही, नहीं कभी आकर फेसबुक पर ही मिल लीजिए।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं मेरे यानी समर के साथ लेजेंड्स द अचीवर सीरीज। आज मैं घनश्याम दास बिड़ला जी की कहानी आप तक पहुंचा रहा हूं। बिड़ला जी को भी इसी काम में लगाया गया। जब बापू कलकत्ते से आए तो सब में उछाल था, सब में बड़ा उत्साह था कि हम बापू की आवभगत करेंगे, ऐसा स्वागत करेंगे वो भी याद रखेंगे। बकौल जीडी बाबू भीड़ बापू को सुनने को आतुर थी, लेकिन बापू ने जब बोलना शुरू किया बड़ी नीरस आवाज में, कोई उतार चढ़ाव नहीं आवाज में, कोई प्रभाव नहीं, ऊर्जा भी नहीं, मगर एक तार था जो उनको सबसे जोड़ता था। कुछ बात नहीं थी तब भी, और ऐसा जादू डाला कि दोनों जिंदगी भर फिर जुड़े रहे। बापू को जीडी बाबू ने खत लिखा, बहुत कुछ लिखा उसमें, और एक सवाल पूछा कि क्या आपसे किसी सार्वजनिक मसले पर भी बात हो सकती है। उन्होंने जवाब में लिखा, हाँ बस इतना ही, पर पत्र का जवाब जरूर आया। इस बात से ही जीडी बाबू बहुत खुश हो गए। खैर, इसके बाद तो ये याराना इतना गहरा हो गया कि दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम तक खतों किताबत करते रहे, एक दूसरे को खत लिखते और अपनी अपनी बात कहते, इवन मौसम, बिजनेस की सब चीजें शेयर करते। इनफैक्ट आखिरी वक्त में जब गांधी जी की हत्या हुई थी तब भी वो बिड़ला भवन से ही बाहर निकले थे और वो वहीं रहा करते थे उन दिनों। वेल, इधर जीडी बाबू का किताबें पढ़ने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी रहा। उन्होंने अपनी खुद की लाइब्रेरी बना ली, बाहर जाते विदेश तो किताबें जाते। एक किताब जो वो हर रोज पढ़ा करते थे वो थी श्रीमद् भागवत गीता। ये काफी कम ही लोग जानते होंगे कि उन्होंने गांधी जी की पत्रिका हरिजन के हिंदी एडिशन में भी बतौर एडिटर काम किया। और हाँ, बापू से इंस्पायर होकर उन्होंने 1924 में हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर शुरू किया। इसके अलावा फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही वो बापू के लिए सबसे बड़ी फाइनेंशियल हेल्प बनकर सामने आए। बापू को जब भी जिस भी चीज की जरूरत हुई जीडी बाबू ने उन्हें तुरंत उपलब्ध कराई। हर महीने कुछ अमाउंट तो वो उन्हें देते ही थे। इधर बिजनेस के साथ साथ उनकी लाइफ में एक और तब्दीली आई, और वो ये थी के क्या आप सुन रहे हैं क्या रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। और जब जब तब्दीली आती है तो मैं भी थोड़ा सा तब्दील हो जाता हूँ, है ना, आपको थोड़ा सा टीज कर जाता हूँ। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, कहानी को मैं जारी रखूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर एक कहानी पहुंच चुकी है, आप बस सुनते रहेगा लेजेंड्स मेरे यानी समर के साथ।

0: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
0: दो दीवाने शहर में।

0: Are you ready?
1: Are you ready?
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
4: हाँ जी जी,
3: आधा kg मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी,
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
3: क्या जी?
4: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप.
3: वाजी, क्या बात जी?
4: Order today from GG Mart, your personal grocer.
5: Radio Masti 24/7 live पर समर के साथ आप सुन रहे हैं Legends Achievers.
6: आप सभी का स्वागत, इस्तकबाल, आप हैं मेरे यानी समर के साथ और सुन रहे हैं Legends The Achiever सीरीज. आज जीडी बाबू की कहानी मेरी जुबानी. साल 1912 में ही जीडी बाबू की दूसरी शादी हो गई और उनकी वाइफ का नाम था महेश्वरी जी. इस शादी से उनके 5 बच्चे हुए, 2 बेटे कृष्ण कुमार, बसंत कुमार और 3 बेटियां चंद्रकला, अनुसुईया और शांति. लेकिन किस्मत के खेल भी निराले ही हैं, महेश्वरी जी भी चल बसी. ये लोग कुल 10-12 साल ही साथ रह पाए. अब पूरी तरह से जीडी बाबू ने अपने आप को देश की सेवा में लगा दिया और बिजनेस में, और अपने बच्चों की परवरिश अपने भाइयों को सौंप दी. 1939 के आते आते उनकी जूट फैक्ट्री देश की 13वीं सबसे बड़ी प्राइवेट फैक्ट्री बन चुकी थी. ठीक इसी तरह जीआरडी टाटा भी हिंदुस्तान के नक्शे पर उभर रहे थे और एक अनुमान के हिसाब से 1939 से 1969 तक टाटा की संपत्ति 62.42 करोड़ से बढ़कर 505.56 करोड़, करीब 8 गुना ज्यादा हो गई थी. और उधर घनश्याम दास बिड़ला की संपत्ति 4.85 करोड़ से बढ़कर 456.40 करोड़, यानी करीब 94 गुना हो गई थी. दोनों ही संपत्ति बना रहे थे पर बिड़ला का मामला दीगर था, अलग था. उनके साथ न तो कोई पुराना इतिहास था और न ही कोई विरासत. संघर्ष और लड़ाई ज्यादा थी. जिस तरह जूट की दलाली में उन्हें अंग्रेजों से जूझना पड़ा, ठीक उसी तरह जब उन्होंने 1958 में हिंडाल्को की स्थापना की तब भी उन्हें अफसरशाही से लड़ना पड़ा. आजादी के आंदोलन में जीडी की 3 तरफा भूमिका थी. पहला, उन्होंने पुरुषोत्तम दास ठाकुर के साथ मिलकर फिक्की की स्थापना की. दूसरा, आजादी की जंग में उनसे ज्यादा धन किसी ने नहीं लगाया. और तीसरा, 1926 में मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय की पार्टी की तरफ से सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में गोरखपुर की

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप हैं मेरे यानी समर के साथ और सुन रहे हैं लेजेंड्स दी अचीवर सीरीज। और आज हम बात कर रहे हैं जीडी बाबू उर्फ घनश्याम दास बिरला जी की। उनकी कहानी में अब तक आपको क्या मिला, मैं बताता हूँ। 1919 में पहली जूट मिल बनी, 1924 में हिंदुस्तान टाइम्स, 1928 में शिपिंग में आ गए और 1932 में अवध में शुगर मिल्स लगाई उन्होंने, और 1942 में हिंदुस्तान मोटर्स, 1943 में टेक्सटाइल मशीनरी और स्टील सेक्टर में आ गए, सिमको बिरला सेटअप की, 1947 में ग्रासिम की स्थापना की आजादी के 10 दिन बाद ही, और 1950 में रेलवे वैगन्स बनाना शुरू कर दिया। हिंडाल्को एंड मैसूर सीमेंट ये भी तो उन्होंने बनाया, और इसके बाद डिफेंस एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट भी गवर्नमेंट को सप्लाई करने शुरू कर दिए। इसके अलावा और भी बहुत कुछ रहा, हालांकि अभी मैं सब कुछ शामिल नहीं कर पाया हूं क्योंकि ये उनका साम्राज्य है और ये बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो साल 1983 में जीडी बिरला साहब हम लोगों को छोड़कर चले गए, गुजर गए। उन्होंने अपनी उम्र पूरी उम्र जी और बहुत अच्छे से जी, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद 1986 में 6 ग्रुप्स में ये बिरला ग्रुप टूट गया। एमपी बिरला, एस के बिरला, के बिरला, बी के बिरला, एवी बिरला, जीपी, सी के बिरला एंड अशोक बिरला ग्रुप। हालांकि गुजरने से पहले उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम सभी लोग मनु की संतान हैं, हमारी एक बड़ी फैमिली है, सबके एम्बिशन और आइडियाज अलग हैं, एजुकेशन अलग है और सब कुछ अलग है, और बाद में क्या होगा पता नहीं, फिलहाल तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं, दैट्स ऑल। सम्मान तो हम भी उनका करते हैं। चलते चलते ये कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया दो तरह के लोगों में बटी हुई है, कुछ लोग जो कुछ बनना चाहते हैं, कुछ लोग जो कुछ करना चाहते हैं। जीडी बाबू दूसरे वाले लोगों में से थे जो कुछ बनना चाहते थे। जीडी बाबू को हमारा सलाम। फिलहाल चलता हूं, फिर किसी एक कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा, अपने अपनों का ख्याल रखेगा, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल रखेगा। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएगा, किसी के चेहरे पर

0: were not chosen. They were created.
1: उसकी माँ का नाम जानकी था. हम इसे सीता बुलाएंगे.
0: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
2: पर इस बार सीता आज लंका खुद चलाने आई.
0: Alia Bhatt and Sharwari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
3: Alpha program uska junoon hai, aur jo bhi uske raaste mein aata hai, wo use maar deta hai.
0: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ.
4: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ.
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां.
6: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग. The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

मैं क्या काका जी, तुसी इंडिया दी हो।

भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो। ए उ, आ, ए उ, आ, ए उ, आ।

0: नशा है और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
1: रात अकेली है। जोश में रहो।

0: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना।
1: रात अकेली है।
2: जोश में रहो।

0: भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है।
1: Drop the needle.

संभल, अरे लोग मुझे क्यों देते हैं ताना। हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। अरे तो क्या हुआ, जमाना तो है नौकर बीवी का। दिन तक, दिन तक, दिन तक, दिन तक, दिन तक, दिन तक।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti 24/7 Live Pe.
1: गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा यहाँ पर बिल्कुल जुड़ चुके हैं आपके साथ। यस, इट्स ट्यूसडे मॉर्निंग, इट्स अ ब्यूटीफुल वन इंडीड। एंड सुबह सुबह अगर अंतरा की आवाज आ रही है, विच मीन्स यस, आज मंगलवार ही है। सब मंगल मंगल ही होगा, क्योंकि जब आप और मैं मिलते हैं तो मंगल ही होता है। नहीं, वेल, यहाँ पर कुछ ऐसा है लेडीज एंड जेंटलमैन कि जो सुबह सुबह मुझे ट्यूसडे वाले दिन सुनते हैं, आपको पता है ना, आई हैव दिस टाइनी लिटिल रिचुअल एवरी मॉर्निंग। सो इवन बिफोर आई काइंड ऑफ रीच आउट टू माय फोन, जैसे होता है यूजुअली सुबह उठते ही लोग फोन पे पहले टाइम देखते हैं एंड एवरीथिंग, I reach out to this book which is always kind of lying next to me. I don't even choose a page isme se, and good morning Sapna aunty, I just open it randomly and whatever is written there, I just assume ki shayad this is the tone or the mood of the day. I don't take it to like, it's just a thing I do, okay? Let's put it that way. तो आज का जो पेज है उसमें कुछ ऐसा लिखा था that when you try to learn something new, you will inevitably feel embarrassed in the process. And I was like, wow यार, काफी सिंपल सी बात है, लेकिन हम अडल्ट के लिए कितनी डिफिकल्ट है, राइट? जब हम बच्चे होते हैं, वी वुड फॉल 100 टाइम्स व्हाइल लर्निंग टू वॉक, वी वुड मिसप्रोनाउंस वर्ड एंड ड्रॉ दोस फनी लुकिंग क्रीचर्स एंड हाउसेस एंड बेसुरा गा रहे हैं, किसी को कोई कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बट समवेयर व्हाइल ग्रोइंग अप, एम्बैरेसमेंट स्टार्ट्स, you know, feeling kind of dangerous. And now we don't want to ask questions ki, bhai, nahi, poochenge to log kya sochenge type. So we don't want to learn a new language because our accent won't sound perfect. We don't join a lot of classes or gyms, or even sometimes I have seen people not, you know, pursuing their hobbies which they have been meaning to do for such a long time because hum silly lagenge yaar, is umar mein aisa thodi na koi karta hai. Yeah, but lekin I think such ye bhi hai that every expert we admire today was once a beginner, everyone ignored, right? So I think ye jo aaj page khula hai iska matlab bhi kuch aisa hi hai, that it's okay to be bad at something before you are actually good at it. Thodi si awkwardness, thoda sa, you know, bahut sari learning ke sath bhi aata hai. So just in case if there's something you have been putting off because you're afraid of making mistakes, yeah, just think about it. Kyunki this definitely made me think about it a lot. Chaliye isi khoobsurat thought ke sath, the positivity and the big smile ke sath badhte hain aage on Radio Masti 24/7 live. Yahan pe Nanda ji bhi hamare sath jud chuki hai. Very very good morning. Let's listen to some beautiful songs, come back and let's begin.

0: Are you ready?
1: Are you ready?
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
5: जीजी
4: कृषि वल नट्स, ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
5: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
6: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्र विद आरजे अंत्रा।
7: एक बड़ी फेमस सी कहावत है कि जो होना होता है ना पाजी, वो हो के रहता है, जब भी होता है अपने टाइम से, बट होता जरूर है अगर उसकी किस्मत में ये लिखा हो कि उसका होना बिल्कुल बनता है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा आपके साथ, 7:23 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। गुड मॉर्निंग। यस, मस्ती का मंत्रा चल रहा है यहाँ पे। एंड इट वॉज यस्टरडे इवनिंग जब मैं आपको ये खबर दे रही थी अबाउट दिलजीत दोसांझ की मूवी सतलुज, एंड जो है वो किस तरह से 3 साल के सेंसरशिप के इशू के बाद में फाइनली रिलीज हुई एक ओटीटी प्लेटफॉर्म में, एंड विद इन 24 आवर्स इट वॉज टेकन डाउन और उसको बैन कर दिया गया। बट मैंने जैसा कि कल भी कहा था कि विद इन दोज 24 आवर्स अ लॉट ऑफ पीपल, यू नो, पीपल आर वेरी फास्ट नाउअडेज, इतना फट फट स्क्रीन शॉट्स ले लेते हैं, यू नो, मूवीज डाउनलोड कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। सो अपेरेंटली दिलजीत दोसांझ की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म सतलुज जो है, which is based on human rights activist Jaswant Singh Kalra, it was removed and then jo hai kafi debate chali on censorship and free speech ko lekar ki itni hum log yahan pe baatein karte hain ki freedom of speech honi chahiye and you know is tarah ka content koi banata kyun nahi hai, sab kehte hain, but jab ye content aata hai to nobody is kind of ready to accept it and there are a lot of people jo aake kehte hain ki nahi ye to hum kar nahi sakte and ultimately movies इस तरह की बैन हो जाती है। बट डिस्पाइट ऑल द अटेम्प्ट्स टू ब्लॉक इट, ये फिल्म हो गई लीक ऑनलाइन। That is right. And it was widely shared on social media and the messaging apps. So Diljit jo hai acknowledged that iski ek troubled release rahi, but he predicted it. He knew it. And he said that maine to pata tha ki aisa hona hi hona hai. But he also encouraged sharing. Director Hani Trehan jo hai Arjun Rampal bhi apparently is movie mein inhone ek chota sa role nibhaya hai. The film basically highlights historical abuses during Punjab's militancy and isi चीज को दर्शाते हुए in a lot of, you know, काफी scenes हैं ऐसे, violent scenes हैं, a lot of things. अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो आपके उसमें भी फीडबैक भी कहीं ना कहीं तो वो आया ही आया होगा। सो द डिस्कशन इज ऑल अबाउट आर्टिस्टिक फ्रीडम एंड डिजिटल कंटेंट कंट्रोल, कि क्या ये सही है जो हुआ सतलुज के साथ, या इस बारे में और चर्चा होती रहनी चाहिए टिल द टाइम देयर इज सम काइंड ऑफ चेंज व्हिच अल्टीमेटली हैपेंस। आई डोंट नो, बट आई नो वन थिंग फॉर श्योर दैट व्हाटएवर इट इज, we will keep you posted on that. On Radio Masti 24/7 Live, फिलहाल के लिए जरा सी नहीं, थोड़ी उससे ज्यादा सी, जो हमारी दोस्ती है उसके नाम अगला गाना। Good morning.

0: बाजू ट्रैफिक अपडेट।
1: हमारी नंदा जी को ये गाना बहुत ज्यादा पसंद है। श्रेया घोषाल की आवाज क्या मीठी है यार, शी इज रियली रियली गुड। 7:36 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूं अंतराब के साथ। ट्रैफिक का अपडेट ले लेते हैं फटाफट से। हेवी ट्रैफिक इस वक्त आपको मिलेगा ऑन BKE टूवर्ड्स PIE बिटवीन PIE चांगी एंड बुकेट पांजांग रोड। एक एक्सीडेंट की खबर है ऑन PIE, अगर आप जा रहे हैं टूवर्ड्स चांगी आफ्टर बिडॉक रिजर्वॉयर रोड, इसका कंजेशन मिलेगा टिल जलान यूनोस, अवॉइड करें लेन नंबर 1। एक और एक्सीडेंट की खबर है ऑन TPE टूवर्ड्स PIE आफ्टर सेंकांग वेस्ट रोड। सो वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। प्लीज ध्यान से गाड़ी चलाएं। अगर आप कैब में भी बैठे हो, पीछे भी बैठे हो, डजंट मैटर, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग योर सीट बेल्ट। इफ यू आर राइडिंग अ टू व्हीलर, मेक श्योर यू आर वेयरिंग द हेलमेट। एंड इफ यू आर वॉकिंग, मेक श्योर दैट आपके कान, दोनों कानों में से एटलीस्ट एक कान फ्री हो, सो दैट यू कैन हियर व्हाट्स गोइंग अराउंड यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर व्हेन यू आर आउट ऑन द रोड। एंड फोन पे कम और रास्ते पे ज्यादा ध्यान, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। इसी बात के साथ फिलहाल आगे बढ़ते हैं और या इश्क विश्क रिबाउंड से कमिंग अप नेक्स्ट इज दिस गाना।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
1: The newest chapter in the YRF spy universe.
4: पर इस बार सीता आज लंका खुद चलाने आई।
1: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडिया फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट।
5: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है।
1: बॉर्न टू फाइट बिल्ट टू सर्वाइव। अल्फा रिलीजिंग 3rd जुलाई आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट।
6: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
7: अभी अल्फा का ये सुनते हुए याद आया कि कल ही शायद मैं आपसे कॉन्टेस्ट के लिए पूछ रही थी, राइट, दैट हु इज दैट अल्फा वुमन यू नो, एंड सडनली आई रिमेंबर दिस वन वुमन। आई स्टिल डोंट नो हर नेम, बट देन शी फॉर मी शी वाज डेफिनेटली एन अल्फा वुमन। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ यहाँ पर चल रहा है मस्ती का बंजरा, एंड आई थिंक आई वॉज बाहर थी, मैं ट्रैवल कर रही थी एंड हम लोग सारे गाड़ी में बैठे हुए थे। देयर वाज अ ह्यूज ट्रैफिक जैम, अपेरेंटली आगे कहीं पर जो है किसी वजह से ट्रैफिक जाम हो रखा था, तो पीछे से एक एम्बुलेंस आने वाला था एंड जगह नहीं थी बिकॉज द रोड वाज सो नैरो, तो इतना जगह नहीं बन पा रहा था। अगर हो भी रहा होगा तो यू नो हाउ इट वर्क्स, जब इंडिया में ट्रैफिक जाम होता है तो फिर लोग नहीं चाहते हैं, जरूर आड़ा टेढ़ा करके कहीं से भी जो है खड़ा कर देते हैं। एंड आई रिमेम्बर दिस, बाय द टाइम वी are sitting in the car, I am also sitting in the car, we all are whining ki yaar ye to matlab ye wo, and bahut der tak aisa hi chalta raha, and suddenly we saw this woman who was busy kind of moving the cars, aur kaun kitna move ho sakta hai, kitni gaadi kahan pe move ho sakti hai, so that ambulance can pass that road, because उधर उस एम्बुलेंस में मे भी कोई है जिसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसका हॉस्पिटल पहुंचना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। एंड इन माय माइंड आई वाज लाइक वाओ, ओह माय गॉड, वी डिडंट इवन थिंक ऑफ इट, राइट, एंड शी इज देयर राइट देयर ऑन द रोड जस्ट डूइंग व्हाट शी थॉट इज सपोज टू बी डन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। दैट्स एन अल्फा वुमन। You know some alpha woman who is around you, whom you have seen? Unfortunately, I don't know that girl's name, but then definitely she is an amazing human being. That is for sure. अगर आप अभी अपनी जिंदगी के में जो है आसपास किसी अल्फा वुमन को इस तरह से जानते हैं, तो जरूर हमें बताएं, लिखकर भेजें, you know, why you think that person is the alpha woman. Alright, तो वो तो है ही एक बात। Alpha जो कि रिलीज हो चुकी है पिछले हफ्ते, and all thanks to Home Screen Entertainment इस मूवी को रिलीज करने के लिए आइलैंड वाइड। भाई Alpha में हमारी शर्वरी एंड आलिया भट्ट दोनों बनती हैं। It's a spy thriller, okay? There is a little bit of cameo of Hrithik as well. There is हमारे जैकास अनिल कपूर एंड बॉबी देओल जो कि हरियाणवी बोलते हुए जो है नजर आते हैं। क्या वो आलिया भट्ट के पिताजी होते हैं असली में या नहीं? That is for you to find out. I want you to go and watch the movie and find out, and of course come and tell us how it was, kyunki first 10 people is hafte ke beech andar theek hai, jo bhi jayega dekh kar aayega, if you share your ticket with us we are going to reimburse your ticket. That is right, but first come first serve, and it is not tickets, एक ही टिकट रिइंबर्स करेंगे, लेकिन आपको इसी हफ्ते में जाके अल्फा देखकर आना पड़ेगा। यप, सो या वही गो गो गो, प्लान योर थिंग, बुक योर टिकट्स एंड देन गो एंड वॉच अल्फा ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। एक और अल्फा टाइप गाना

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वाल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
0: हर ट्यूजडे एक नया ट्विस्ट, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा।
3: क्यों रोया रोनाल्डो? क्या रोनाल्डो ने क्रिशवल के नट्स नहीं खाए थे? नहीं, इट वाज टू ड्रामेटाइज्ड, राइट? रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ चल रहा है मस्ती का मंत्रा। बट व्हाई डिड रोनाल्डो क्राई? बिकॉज एवरी अदर वीडियो ऑन सोशल मीडिया एंड एवरी अदर आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट इट। वेल, इसी के बारे में बात करेंगे, लेंगे फीफा का अपडेट बट अगले घंटे में, बिकॉज ये घंटा होने वाला है खत्म। करते हैं इसको रैप अप ऑन अ वेरी वेरी म्यूजिकल नोट एंड व्हेन वी कम बैक नेक्स्ट आवर में बात करते हैं कि क्या रहा नाल्टो का अपडेट अलोंग विद फीफा में कौन से टीम्स जो हैं जो बड़ी आगे। गुड मॉर्निंग।